सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास
2: कुसुम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
2: कुसुम

Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट बीमा

चढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Tanisha. Tanisha. Bachar Arjit Singh ki awaaz mein Soulmate only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha Agiye ji aapki sat bindas mornings lekar a very good morning meri jaan. Sunday ka din 27th of September, bhai September ka mahina bhi khatam hone wala hai bahut jaldi. अक्टूबर आने वाला है और अक्टूबर में कुछ स्पेशल है बताऊंगी सब कुछ अभी बता दूँ अभी तो आई हूँ यार पहले आप बताओ जी हाँ हाउ वाज योर वीकेंड कैसा था सब कुछ बढ़िया है कैसा महसूस कर रहे हैं आज बाहर निकलेंगे तो वेदर थोड़ा सा आराम तो दे रहा है देखिए ब्यूटिफुल ट्रैक अगर ये मूवी देखी है तो इस गाने का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है और ज्यादा इमोशनल लगने लगता है और बिना मूवी देखे भी गाना काफी इमोशनल है भाई काफी मुश्किल हो जाता है ये समझ पाना ना पानी दा रंग बह के And see, all these amazing tracks are lined up for you. Along with that, ये खूबसूरत nostalgic feels देने के लिए भी है. बड़े अच्छे लगते हैं. Beautiful गानों का ऐसे you know सारी lined up है. What am I saying? खूबसूरत गाने लाइन अप है आपके लिए पूरे इस आवर में और ढेर सारी बातें कर रही हैं एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू यस सुपर एक्साइटेड फॉर दैट उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए लेकिन सबसे पहले मैसेज करके मुझे बताइए हाउ आर यू मेरी जान सब ठीक है ना 3311 1063 पर सेंडिंग लाल लाल कलर की बांगड़ी इन द वॉइस ऑफ संजू राठौर स्टे ट्यून्ड एंड जी विद अस

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: Tanisha. Arijit Singh ki awaaz mein Dhurandhar se phir se naina bhare beautiful track only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par aur waqt ho gaya hai messages ka. तो नाजरी जी का मैसेज आया है, कहती हैं, ईच मॉर्निंग व्हेन आई ओपन माय आईज आई से टू माय सेल्फ आई नॉट इवेंट्स हैव द पावर टू मेक मी हैप्पी और अनहैप्पी टुडे, गुड मॉर्निंग. दैट इज सच अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर, क्योंकि हम ना चीज़ों को बहुत अपने आप को ओवर पावर कर लेने देते हैं. इट इज़ ऑल इन आर हेड. आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो और बढ़िया एकदम दिन बिता सकते हो यार, पर नहीं, ऐसे कैसे. खुद को परेशान करना भी तो ज़रूरी होता है ना जीवन में. अबराज जी का भी गुड मॉर्निंग आया है हमें यहाँ पे. संधु जी का भी मैसेज है, गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ ब्यूटीफुल डे अहेड, मे इट बी फिल्ड विद जॉय, पॉजिटिविटी एंड लिटिल मोमेंट्स दैट मेक यू स्माइल, एम्ब्रेस टुडे. हरपाल संधु फ्रॉम द कंसेक्रेट जी अविंदास. एंड शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है, वो कहते हैं, यू मेक अ लिविंग बाय वॉट यू अर्न, यू मेक अ लाइफ बाय वॉट यू गिव. दैट इज सो सो सो ट्रू एंड ब्यूटिफुल. और जुल्फी जी का मैसेज है, व्हेन यू डू समथिंग ब्यूटिफुल एंड नोबडी नोटिस्ड, डू नॉट बी सैड, फॉर द सन एवरी मॉर्निंग इज अ ब्यूटिफुल स्पेक्टेकल एंड येट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस स्टिल स्लीप्स. सो ट्रू. हाँ. एंड सोना जी का भी मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग तनीषा, वेदर इज टू गुड एंड ग्लैड टू हियर यू इन द मॉर्निंग शो. थैंक यू सो मच सोना जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी आउट देयर. जो ऑलरेडी जाग चुके हैं बढ़िया है, और जो ऑलरेडी काम के लिए निकल गए हैं और भी बढ़िया है. दोज हु आर ड्राइविंग राइट नाउ, बी केयरफुल, फ़ोन वोन नहीं यूज़ करना है, बस मुझे सुनते रहो, और जब मौका मिले तो वो फ़ोन उठा लेना और मुझे मैसेज कर देना, ओनली वेन यू आर नॉट ड्राइविंग, ठीक है. वरना कहोगे तनीषा ने कहा था कि फटाफट से मैसेज कर दो, तो इसीलिए नो, डोंट डू दैट, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सो अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जी गोविंदास.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Visionary brands and business owners. If you create innovative products or services for children, then your biggest stage is ready.
2: Al Sharq Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
1: at QNCC Hall No. 5.
2: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
1: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

शंकर महादेवन और शफकत अमानत अली की आवाज में, शफकत अमानत अली साहब की आवाज में की साहब हो गया था मेरा ब्यूटीफुल ट्रैक मितवा सुना आपने कभी अलविदा ना कहना मूवी से ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम दरीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. एंड अभी जो हमने मैसेज पढ़ा था ना, टू एक्सटेंड टू दैट एक बात बोलना चाहूंगी, सब कुछ मे भी अभी ठीक नहीं होगा बट द बेस्ट पार्ट इज कि सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं रहेगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ टाइम, यू नो इट चेंजेस. अगर अभी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है तो एकदम बढ़िया वाला टाइम भी आएगा, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता मेरी जान. इट कीप्स मूविंग, इट विल चेंज. और अगर अभी बढ़िया चल रहा है तो थोड़ा कम बढ़िया भी होगा, बट देन अगेन इट विल बिकम बढ़िया. सो बेसिकली ये जो अप डाउन वाला थिंग है ना, मे बी दैट इज हाउ आई सी इट. ये इसीलिए आता है सो दैट हमें वो जो अच्छी चीज़ें हैं उसे अप्रिशिएट करने की भी आदत हो, क्योंकि अगर हमेशा अच्छा ही चलता रहा तो हम बोर हो जाएंगे यार. हम इंसान ऐसे ही होते हैं. सो दैट इज यू नो दैट अप डाउन इज रिक्वायर्ड, कि जब आप डाउन्स में हैं तो आप अपने अप्स को अप्रिशिएट करें कि आई एम ब्लेस्ड, यू नो वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होनी चाहिए. सो थोड़ा चिल करो, जो कुछ भी हो रहा है अभी सराउंडिंग में आपकी वो हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला है. सो डू नॉट लेट इट ओवरपावर यू. इन्जॉय योर ईच डे टू द बेस्ट, कोशिश करो एटलीस्ट, ठीक है. सेंडिंग आयुष्मान खुराना की आवाज में विकी डोनर से पानी दा रंग. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: जाने जाने एक गल सुन दी जा लाके कदे आस किसे खास ते ना बैठी जड़ा लंघ गया वेला इतिहास ते ना बैठी मुक जाना मैं सुख जाना मैं फुल जया लेके मेरी लाश ते ना बैठी
1: तनिशा
2: सुंदर गाना जरूर इन द वॉइस ऑफ अबार शक्ति खुराना ऑन लियोन रेडियो 106.3 एफएम तनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर Somewhat yes, but आगे जो दिन में होने वाला है उसके हिसाब से तो मैं नहीं कह पाऊंगी ये बात. फिलहाल the temperature is 33 degrees and it feels like 31. Finally हम रिवर्स में चलने लगे हैं फीलिंग्स के नाम पर. सो मुझे खुशी हो रही है उस बात की. अदरवाइज़ अगर 33 टेम्परेचर है तो 43 ही फील होगा. ये ऐसे बना रखा था रूल इसने अपना. तो अभी जो ट्रांजिशन वाला फेज़ है वो और तेज़ी से बढ़ गया है. आज हाईएस्ट टेम्परेचर 39 हो सकता है, लोएस्ट विल बी 31. लेकिन रात में थोड़ा गर्म होगा, थोड़ा वार्म होगा और काफ़ी ह्यूमिड होगा. ह्यूमिड एक्चुअली इस पूरा वीक होगा. मेट डिपार्टमेंट ने वार्निंग दिया है कि इट इज़ गोना बी वेरी ह्यूमिड दिस एंटायर वीक. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्रैक्टिस कॉशन. ऑल्सो रात में और सुबह के टाइम पर ना थोड़ा सा फॉगी हेजी मिस्टी काइंड ऑफ वेदर होने वाला है. सो उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हैम्पर होगी. सो दोज हु ड्राइव अर्ली मॉर्निंग टू वर्क और टू वेर एवर और एट नाइट प्लीज़ बी वेरी केयरफुल मेरी जान. विजिबिलिटी हैम्पर होगी तो ज़्यादा स्पीड में चलने का ज़रूरत नहीं है, वक्त से पहले निकल जाओ ठीक है. और साथ में फ़ोन वोन नहीं यूज़ करना, ये तो आपको पता है. वैसे समझदार लोग हैं हमारी कतर में, है ना, तो इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू, क्योंकि हम लाइफ के हसल बसल में इतना बिजी हो जाते हैं, ये बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं कभी कभी, एंड हो जाता है. कोई बात नहीं यार, आप फ्रेश सॉन्ग सुनो एकदम. सुन रहे हो रेडियो ऑलिव, ट्रियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. ये गाना

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग RJ तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: धड़क टू से प्रीत रे व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और भाई कदर ने मार ली है जंप और जंप मार के पहुंच चुका है 47th पोजीशन पे वर्ल्ड वाइड किस चीज में बता रही हूँ यार. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2026 के अकॉर्डिंग कतर जो है वो मूव कर चुका है 10 प्लेसेस अप रीचिंग 47th ग्लोबली अमंग 110 इकोनॉमीज. जी हाँ और कहा जा रहा है दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंप्रूवमेंट इन टूरिज्म प्राइस कंपेटिटिवनेस. कतर ने जो है अपना प्राइस कंपेटिटिवनेस स्कोर जो है वो इंक्रीज कर दिया है बाय 49% और ये लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है इंडेक्स के द्वारा और जो ओवरऑल टूरिज्म डेवलपमेंट स्कोर है वो 6% से बढ़ गया है फ्रॉम 2024 एंड इट इज द फास्टेस्ट ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द मिडिल ईस्ट. यस कतर ऑल्सो सॉ 12% इम्प्रूवमेंट इन ओपननेस टू ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इम्प्रूवमेंट ग्लोबली. इट डज नॉट मीन दैट कतर इज द वर्ल्ड्स चीपेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन. नो WEF का जो प्राइस कंपेटिटिवनेस मेजर है वो देखता है फैक्टर्स जैसे कि होटल प्राइजेस या फिर जो दूसरे ट्रैवल रिलेटेड कॉस्ट है वो कितने ज़्यादा अफोर्डेबल है लोगों के लिए कितने ज़्यादा मैनेजेबल है उसके बेसिस पे ये इंडेक्स जो है रैंकिंग करता है. सो कतर ने सो फार इन द फर्स्ट 8 months ऑफ 2026 2.338 million विजिटर्स को वेलकम किया है एंड दैट इज़ ह्यूज. सो कतर का बेसिकली फोकस राइट नाउ ये है कि ईयर राउंड टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाए से यू नो लेजर को कवर कर रहे हैं बिजनेस को कवर कर रहे हैं स्पोर्ट्स को कल्चर को और जितने भी मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उन्हें कवर किया जा रहा है वो कतर में स्पेशली ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. सो दैट्स हाउ कतर इज यू नो ट्राइंग टू सेट अ बेंचमार्क इन एवरी सेक्टर एंड आई एम रियली हैप्पी.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: दनिशा दिलजीत दोसांझ और सुखबीर की आवाज हुई गुड न्यूज से सौदा खरा खरा एकदम खरा सौदा हुआ है भाई साहब बता दी वो यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम दनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और खरा सौदा हुआ है एशियन फुटब�ल कन्फेडरेशन में AFC एशियन कप जो होने वाला है सऊदी अरेबिया 2027 में उसमें 8 कतरी ऑफिशियल्स हैव बीन सिलेक्टेड यस ये जो टूर्नामेंट है ये सऊदी अरेबिया में होगा जनवरी 7 से लेकर फरवरी 5 तक और जो कतरी ऑफिशियल्स जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें वो है अब्दुल रहमान अल जासिम इंटरनेशनल रेफरी सलमान फलाही इंटरनेशनल रेफरी तलब सलीम अलमारी असिस्टेंट रेफरी सौद अहमद असिस्टेंट रेफरी माजिद हदीरास असिस्टेंट रेफरी खामिस अलमारी वीडियो मैच ऑफिशियल अब्दुल रहमान अब्दो टेक्निकल इंस्ट्रक्टर बांजर अल दोसारी fitness instructor all these people have been selected for AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 and congratulations bhai Qatar pehle ye benchmark set kar diya humne ki humse behtar sports events koi nahi organize kar sakta aur ab khelne mein aur khilane mein bhi hum hi aage hain that is so good abhi kuch der mein laut kar aati hu aur batati hu ki IC Nagoya jo ki Asian Games ho rahe hai usme kya ho raha hai stay tuned and बिंदास
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई
2: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं
3: अरे क्या हुआ इतनी खुशी किस बात की
4: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस फ्रेश ग्रोसरी इलेक्ट्रॉनिक्स होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ लुलु एनिवर्सरी बोनांजा ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स
5: लुलु वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
6: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
8: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

तनिषा। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुनो ना सुनो ना, मेरी बात सुन लो यार। आप चलते चलते मूवी से सुना अपने गाना ऑल ऑन रेडियो ऑल एप 106.3 FM, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और मैंने कहा था आईटी नागोया में क्या हो रहा है वो बताती हूँ। सो कतर मेंस बास्केटबॉल टीम जो है वो जीत चुकी है सिल्वर मेडल एट आईजी नागोया 2026 एशियन गेम्स इन जापान। जी हाँ, एंड फाइनल्स में पहुंच चुकी हमारी टीम एंड दे हैव वन 5 मैचेस बिफोर रीचिंग द फाइनल। अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट टू साउथ कोरिया इन द गोल्ड मेडल फाइनल, बट दैट्स ओके राइट। इट्स अ गेम, कोई ना कोई जीतेगा कोई ना कोई हारेगा। एंड आवर टीम्स आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, आवर एथलीट्स आर डूइंग absolutely amazing, so kudos to them and lots of congratulations to them. Idris ji yahan pe mujhe photos bhej rahe hain by the way, bahut sundar sundar Qatar ki, ek to badi sundar jahan pe vishal imarat nazar aa rahi hai aur ek either it is sunrise or sunset ka picture, but whatever it is absolutely beautiful. Thank you so much for sharing that Idris ji, sending an amazing track your way. Stay tuned and you bindas.

0: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
1: Lulu Fashion Store का Half Pay Back is back.
0: Selected ready-made garments, sarees, churidars, footwear, ladies bags और baby accessories पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
1: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
0: Half Pay Back, shop more. Get rewarded instantly only at Lulu Hypermarket.
2: Lulu, where the world comes to shop.
3: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
4: मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए.
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
3: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
3: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
3: Overseas release by Zee Studios.
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
7: इन एसोसिएशन विद
8: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: तनिषा
1: ब्यूटिफुल मैशअप ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और भाई क्रेजी कॉन्फिडेंस किसमें भोपाल की एक स्टूडेंट में जिनका नाम है नंदिका गुप्ता शी स्कोर्ड 99.6% ओके 99.6% इन हर क्लास 10th सीबीएसई एग्जाम्स पर खुश नहीं थी वो जी मेहनत करी होगी लड़की ने ऑब्वियसली एंड शी वॉज क्वाइट श्योर कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ है रैंकिंग में नहीं ज्यादा नहीं आ गए कम आए हैं कह रही है 99.6 माइंड यू जी कम है 0.4% कैसे काट दिया इन्होंने इस बात का मलाल था और उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया गेस व्हाट रीवैल्यूएशन में वो लड़की को 100% मार्क्स मिले हैं आई कैन नॉट बिलीव दिस मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गो फॉर रीवैल्यूएशन अगर बहुत बढ़िया मार्क्स है लाइक 99.6% कि भाई कम कर दिए तो 98-97 हो गए तो और ज़्यादा दुख होगा राइट बट शी वॉज सो श्योर कि मैंने जितनी मेहनत करी और मैं जिस तरह से लिख कर आई हूँ आई नो आई डिजर्व फुल 100 एंड शी गॉट इट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वी नीड यू नो अगर हम किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने जी जान लगा दी है तो यू शुड बी 110% श्योर कि मैं इसमें एक्सेल करके रहूँगा करके रहूँगी जी हाँ दैट्स हाउ यूनिवर्स ऑल्सो हेल्प्स यू आउट कि भाई इसको अगर इतना भरोसा है खुद पे तो हु एम आई टू स्टॉप देम हाँ दैट इज सच एन अमेजिंग थिंग आई रियली फील हैप्पी अबाउट हर बट नीचे कॉमेंट्स में आ रहा था कि कैसी लड़की है सेटिस्फाई नहीं हो रही है 99.6 में इतने में तो कम से कम 4 लड़के पास हो जाते हैं एंड नो वर्ड्स फॉर दैट सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक स्टे ट्यून्ड जी विद अस

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स.
4: लुलु, where the world comes to shop.

0: 31 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
2: हाय रेडियो ऑलिव, रेडियो ऑलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान।
3: I'm in number one, रेडियो ऑलिव सुनो, रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
6: इन एसोसिएशन विद
5: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है. यहाँ पर फॉर्मूला वन तो इस साल हो जाएगा, ठीक है. देन 2027 में मोटो जीपी कतर एयरवेज ग्रैंड प्री भी होने वाला है फ्रॉम 12th टू 14th मार्च एट लुसेल इंटरनेशनल सर्किट. यस, सो बेसिकली 5th टू 7th मार्च इट इज गोना ओपन इन थाईलैंड एंड देन राउंड टू विल बी होस्टेड बाय कतर. और कतर ग्रैंड प्री जो है वो सिर्फ नाइट रेस होगी इस बार के 27 मोटो जीपी कैलेंडर में. वी नो दैट लुसेल हैज बीन होस्टिंग मोटो जीपी सिंस 2004 एंड मेड हिस्ट्री इन 2008 बाय होस्टिंग मोटो जीपी'स फर्स्ट एवर नाइट रेस. ये जो वीकेंड है इट विल आल्सो इंक्लूड टिसो स्प्रिंट on Saturday followed by the main Grand Prix on Sunday. Sprint basically is a shorter race covering half the distance of the main race with its own championship points and podium. And along with MotoGP, Lucelle will also have another motorsport event later that month, that is Qatar 18-12 kilometer FIA World Endurance Championship from 25th to 27th March. So all these people, you know, who are interested in motorsports, भाई मिस नहीं करने का है. मार्च आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ होने वाला है. टिकट डिटेल्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, सो ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड विद मी. जैसे ही अनाउंस होगी मैं आपको बता दूंगी. जी हाँ.

0: track Beautiful Movie. कहो मैं अब क्या करूं, मुश्किल है इस सवाल का जवाब तो. सुद्री रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: Cool song.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
1: Cool song.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट.
3: लुलू, where the world comes to shop.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindaas Morning.
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
6: इन एसोसिएशन विद
5: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

तनिषा शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में दिल चाहता है मूवी से। वो लड़की है कहाँ, ये लड़की यहाँ है और ये लड़की आपके लिए लेकर आई है कुछ। यस, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है। यहाँ पर 2 अक्टूबर आने वाला है, ठीक है, एंड वी ऑल नो समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट हैपेंड ऑन 2 अक्टूबर। हमें उसकी पूरी स्टोरी मुंह जबानी याद है और उसका कंक्लूजन आने वाला है इस 2 अक्टूबर को। जी, दृश्यम 3 द कंक्लूजन इज कमिंग आउट, रिलीजिंग ऑन 2 अक्टूबर। और अगर आप जीतना चाहते हैं उसके टिकट्स तो आपको सुननी है मेरी बात। मेरी बात सुन के मेरे सवाल का जवाब दे देना है, एकदम सिंपल सा सवाल, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि दृश्यम मूवी में बहुत आसान है ये, तो ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं हम आसान से, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, देखते हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो कितनी तेज है। सो दृश्यम मूवी में अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम क्या था? फुल नेम चाहिए मुझे, नेम विद सरनेम ये बताएं आप मुझे। दृश्यम मूवी में अजय देवगन के कैरेक्टर का फुल नेम क्या था? 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर, एंड यू कैन विन कपल मूवी टिकट्स फॉर दृश्यम द कंक्लूजन, जो कि 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और हम साथ में देखेंगे बाय द वे ये मूवी 3 अक्टूबर सैटरडे को। तो अगर आप जीतना चाहते हैं मूवी टिकट्स तो मैसेज कर दो 3311 1063 पर, बता दो कि अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम क्या था दृश्य मूवी में। सेंडिंग अरिजीत सिंह और चिन्मय की आवाज में 2 स्टेट से मस्त मगन, स्टे ट्यून एंड जुबिन।

0: third-party insurance may be a requirement. But with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
0: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड टीएनसी अप्लाई

0: भेड़िया मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में अपना बना ले, खूबसूरत गाना और अरिजीत सिंह की आवाज की तो क्या ही बात है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, दिनेश आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। वैकी विजडम में बात करते हैं एप्पल के लोगों की, वो जो खाया हुआ एप्पल लोगो में दिखता है आपको। स्टीव जॉब्स का पहले आइडिया था, इनिशियल डेज में उन्होंने एक्चुअली ये किया भी था। सो उन्होंने लोगो उल्टा लगाया था, इन्वर्टेड लगाया था, ठीक है। सो जो लीफ और खाया हुआ जो साइड नज़र आता है ऊपर की तरफ, वो नीचे नज़र आता था। सो बेसिकली ये करने का आइडिया उनका ये था कि जब यू नो अ पर्सन हु इज़ यूजिंग अ मैक, उन वो जब अपना लैपटॉप खोलेंगे तो उन्हें सीधा नज़र आएगा, राइट। पर जब सामने वाला देखेगा तो उधर से तो उल्टा ही नज़र आ रहा है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो रहा था, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बिकॉज दैट लोगो इज़ इन्वर्टेड, तो लोग दूसरी साइड से खोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दिमाग में तो यही चलेगा ना कि ये तो उल्टा है तो मतलब कि उस साइड से खुलेगा ये, और इस चक्कर में बड़ा नुकसान हो रहा था लोगों का। सबने सजेस्ट किया स्टीव जॉब्स को कि भाई ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ चेंज इट और सीधा ही रखो। एंड दैट्स हाउ द लोगो इज़ लाइक दैट नाउ। सो या दैट्स द हिस्ट्री ऑफ एप्पल्स लोगो। बट आपको दृश्यम की हिस्ट्री पता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था सवाल कि दृश्य में अजय देवगन के कैरेक्टर का फुल नेम क्या है। 3311063 पर मैसेज करके मुझे बताइए, या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर, एंड गेट अ चांस टू विन कपल मूवी टिकट्स फॉर दृश्यम द कंक्लूजन, जो कि हम साथ मिलके देखने वाले हैं 3rd of October को। जी हाँ, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट वन। देर मत लगाओ, जल्दी से मैसेज कर दो, ऑलरेडी काफ़ी सारे आ चुके हैं। दिस इज द लास्ट चांस, इसके बाद जब मैं लौट कर आऊँगी अगले घंटे के पहले गाने के बाद, तब मैं विनर्स अनाउंस करने वाली हूँ। तो ये लास्ट मौका है, 3311063 पर आपने मुझे मैसेज करना है और बताना है कि दृश्य मूवी में अजय देवगन के कैरेक्टर का पूरा नाम, नेम विद सरनेम क्या था। 3311063 सेंडिंग अ ब्यूटीफुल ट्रैक
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Hour. Yeah, guys.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक विजिट bima.com.qa बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई

पति पत्नी और वो से बड़ा ही कमाल का गाना ऑल ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। और मैंने पूछा था सवाल दृश्यम मूवी की जो टिकट्स जीत सकते थे उसके लिए, सो द क्वेश्चन वाज कि दृश्यम मूवी में अजय देवगन के कैरेक्टर का पूरा नाम क्या था। सो आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर्स ओवर हियर। मुझे पता है भाई ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, उन्होंने जो क्रेजी तरीके से यू नो लेटर ऑन इसकी मार्केटिंग भी करी थी और जिस तरह से पीआर किया था एंड मूवी वॉज सो ब्रिलियंट, तो ये भूलने वाली चीज है ही नहीं। एंड यस द करेक्ट आंसर इज विजय सलगांवकर। एंड वी हैव गॉट आंसर्स हियर फ्रॉम शकीर, मनस्वी, अली, आई एम, इलियास, मोहम्मद, श्वेता, शशिधरा, तमल, विशाल, जीजी, शबी एंड देर इज वेट यार स्क्रॉल कर रही हूँ, सबर करो। देन देर इज खुश, देर इज विकास, देर इज रेना एंड देर इज दानिश, all these answers and I had to select only two lucky winners today. But jo aaj nahi jeete hain, don't worry, pura din also Kashish also aapke liye tickets leke rahegi, Simran bhi leke rahegi, and this entire week we're gonna play this contest and you have a chance to win couple movie tickets. And the two lucky winners today are, bata do, so the lucky winners are Vishal and Smita. Congratulations, you both have won couple movie tickets. आप अपनी जो बाकी डिटेल्स हैं लाइक क्यू आई डी एंड ऑल वो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए एंड वी विल लेट यू नो व्हेन एंड वेयर टू कलेक्ट योर टिकट्स फ्रॉम। कंग्रेचुलेशंस, बाकी छोटा दिल नहीं करना मेरी जान, अभी और भी टिकट्स हैं एंड यू हैव मोर चांसेस टू विन द टिकट्स। ऑल्सो हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लो, बस इतना ही बताना चाहूँगी। लौट के राजी कुछ देर में बताती हूँ व्हेन इट रेन्स इट पोर्स का क्रेजी एग्जाम्पल। स्टे ट्यून्ड एंड टू यू बिंदास।

0: मैं हूँ सारिका।
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: कंपनी का ऐसे एनुअल पार्टी चल रहा था और उसमें दे डू अ लकी ड्रॉ, ठीक है. सो एक मैनेजर का, उस कंपनी के किसी यू नो पोजीशन पे थे वो मैनेजर, उनका नाम अनाउंस किया गया. एंड ये अनाउंस किया गया दैट ही हैज़ वन उस लकी ड्रॉ में 365 डेज का पेड लीव. पूरे एक साल का पेड लीव जीत गए वो. ही डिड नॉट बिलीव. उस लगे तो कोई जोक चल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे मुझे पूरे एक साल की पेड लीव दे सकते हो, दिस इज़ तो लाइक इम्पॉसिबल. एंड आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू बिलीव दिस, बट ये सच है. फिर वहाँ पे जो कंपनी के ओनर थे, जो बॉसेस थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं भाई सही है, ये हमने ऐड किया था यू नो प्राइस के लिस्ट में. एंड यस, यू आर द लकी विनर. दैट इज सो अमेजिंग. 365 डेज का पेड लीव. देयर इज दिस ऑप्शन आल्सो, क्योंकि यार एक साल बंदा काम नहीं करेगा, इट वॉन्ट बी फन. एंड समवेयर डाउन द लाइन ना वो एक चीज़ आ जाती है दिमाग में कि जस्टिफाई कैसे कर रहा हूँ मैं ये सैलरी. इफ आई एम नॉट वर्किंग, हाउ एम आई गेटिंग पेड? फॉर फ्यू मंथ्स बढ़िया लगेगा, इवेंचुअली यू विल गो डाउन इन दैट स्पाइरल. एंड देर इज दिस ऑप्शन ऑल्सो वहाँ पे कि अगर आपको ये 365 डेज का पेड लीव नहीं चाहिए तो आप इसको कैश रिवॉर्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो. तो मैं कहूँगी सर थोड़ा इसे इंस्टॉलमेंट्स में करवा लो, कि इतनी छुट्टी इतना कैश, इतनी छुट्टी इतना कैश. बट द गाइस सो लकी, आई एम फीलिंग वेरी एनवियस राइट नाउ. अगर आपको ये ऑप्शन मिलता कभी कि यू नो आइदर यू टेक 365 डेज का पेड लीव और यू टेक कैश रिवॉर्ड उसकी जगह पर, तो आप क्या चूज करते बताओ मुझे. 3311063 पर स्टेशन टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: तनिषा
1: मोहब्बतें मूवी से बहुत ही कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर तनिषा आपके साथ एंड रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज द हैंडल फॉर आवर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर भी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं एंड वहाँ पर भी काफ़ी सारे यू नो गिफ्ट्स आप जीत सकते हैं जैसे कि मूवी टिकट सम वाउचर्स सो डू नॉट मिस दैट आउट अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाकर कर लो ऑल्सो द इंटायर कॉन्वर्सेशन इफ यू वांट टू हियर यू नो एजेंट्स ऑफ हैप्पीनेस का या फिर एग्जीक्यूटिव लेंस का या फिर कोई भी आप यहाँ पर जो इंटरव्यू सुन रहे हैं या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर जो स्निपेट्स देखते हैं उसका पूरा कॉन्वर्सेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए वहाँ पर आपको फुल कॉन्वर्सेशन मिलेगा और साथ ही में लेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली नो दैट रेडियो ऑलिव का ऐप डाउनलोड करिए कतर में नहीं है तो क्या हुआ रेडियो ऑलिव आपके साथ हर जगह है जी हाँ ऐप डाउनलोड करिए और हमें कहीं से भी लाइव सुन सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं हमसे फिलहाल भेज रही हूँ आश किंग और सुनिधि चौहान की आवाज़ में दम मारो दम से टी एम ओ ओनली ऑन रेडियो ऑलिव जियो बिंदास

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
2: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

राहत फतेह अली खान साहब और मोमिना मुस्तफा की आवाज में ब्यूटीफुल रेडिशन ऑफ आफरी आफरी ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं। यहाँ पर 9:50 हो चुका है क्लॉक में, क्या मतलब, मतलब कि मेरी ड्राइंग का टाइम हो गया। यस, सुबह अब हम कल सुबह मिलेंगे 6 बजे। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, याद रखिएगा वेदर अभी ट्रांजिशन मोड में है तो ये जो कोल्ड है बहुत आसानी से चिपक सकता है, सो प्लीज बी वेरी कॉशियस, ख्याल रखो अपना, क्योंकि सेहत है तो सब है मेरी जान। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस, रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज दी हैंडल, क्योंकि वहां पे कॉन्टेस्ट चल रहे हैं एंड यू कैन विन सम एक्साइटिंग गिफ्ट्स। अभी कशिश आती होगी एंड दोज हु हैव नॉट यू नो गॉट द चांस टू विन द मूवी टिकट्स, पूरा दिन है अभी, पूरा हफ्ता है एक्चुअली आई मस्ट से, हम साथ में देखेंगे दृश्यम द कंक्लूजन, डोंट वरी अबाउट इट। सेंडिंग अ ब्यूटीफुल ट्रैक बरसात फ्रॉम बंजारे ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम। हैव एन अमेजिंग डे टू योरसेल्फ, जियो बिंदास मेरी जान।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट.

पास देखो मैं दे दूंगी, लेकिन अब अजनबी कहाँ रहे हम यार। अब तो हमारी जो है दोस्ती एकदम गहरी हो चुकी, एकदम पक्के वाले मित्र हो चुके हैं हम यार आपस में। हाँ जी, आपकी कशिश उमेश हूँ, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ 106.3 रेडियो ऑल एफएम। अब देखो यार, आज का दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग इनसाइट्स आपके लिए लाने वाली हूँ मैं। यानी हम बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, आपको मूवी टिकट जीतने का मौका देंगे, एंड साथ में हम जो है आपकी हेल्थ की बात भी करने वाले हैं। एंड ऐसा नहीं कि मैं जो है कोई फैक्ट जो है गूगल से निकाल के AI की हेल्प से आपको जो है ला के दे दूंगी, बल्कि आप लोगों के ही पूछे हुए सवाल जो है वो हम पूछने वाले हैं एक्सपर्ट से। अब कब, कहाँ, कैसे, क्या और क्या सवाल है, क्या जवाब है, वो सब आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में। लेकिन उससे पहले जो है आपको बस वॉल्यूम बढ़ाकर मेरे साथ बने रहना होगा और अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करते रहने होंगे 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूं आपकी कशिश। फिलहाल शो की शुरुआत हम कर रहे हैं टॉक्सिक मूवी के गाने मदहोश के साथ। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये अमेजिंग वाला गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो पिंदा।

0: बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
1: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
2: Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Sukhwakif Alkhor.
3: तो जी, आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12, दैट इज 10:12। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
4: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड

0: गाने का नाम बहके यार अरिजीत सिंह एंड मेघना की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आरएफ पर। हाँ जी आपकी कशिश यहाँ वापस आ चुकी है लौट कर लाइफ मस्ती शो आपके लिए लेकर। एंड देखिए यार यूं तो हम बहुत सारी फन फॉलिक मस्ती मजे वाली बातें जो है हर रोज करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिस चीज को देनी चाहिए उसके बारे में सबसे कम बात करते हैं और वो है हमारी हेल्थ। और इस 25th of September को हमने सेलिब्रेट किया था फार्मासिस्ट डे एंड हम जो है कैरन क्योर फार्मेसी जो है वहां पे भी गए थे एंड फार्मासिस्ट के साथ बहुत सारा फन भी किया, हैप्पीनेस लाउंज में उन्हें जो है हैप्पी फील कराने की कोशिश की क्योंकि वो साल भर जो है हमारा ख्याल रखते हैं और हर वक्त पे हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें स्पेशल फील कराएं। हमने बस इसकी कोशिश की एंड फार्मेसी डे के चलते ही हमने जो है आप लोगों से कहा था कि आपके कुछ सवाल हो अगर आपको आज द फार्मासिस्ट में पूछने हो, सो आप लोगों ने अपने सवाल भी हमें भेजे थे, तो बस वही सवाल जो है हमने पूछे हमारे एक्सपर्ट फार्मासिस्ट से एंड कैरन की ओर से जो है हमारे साथ आशिक जी इस वक्त है एंड आशिक जी हमारे सारे सवालों का आंसर कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन जो है कितना भी यू नो लेम क्यों ना हो, लेकिन देखिए हेल्थ के मामले में कोई भी जो क्वेश्चन है वो लेम नहीं होता है, कोई भी छोटा मोटा डाउट हो वो पूछ लेना चाहिए। सो हाय आशिक जी, सबसे पहले तो मैं अपने लिसनर्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या हम कोई भी मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं या हमें पता होता है कि यार इस मेडिसिन का जो है ये रिएक्शन है, क्या हम पहले से मेडिसिन का रिएक्शन जो है वो पता कर सकते हैं या क्या वो स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो हमें मेडिसिन जो है खरीदते हुए ध्यान रखने चाहिए।
1: हेलो, सो माय नेम इज आशिक, आई एम वर्किंग विद कैरन क्योर फार्मेसी, आई एम अ सीनियर फार्मासिस्ट एंड आई एम हियर इन दोहा फॉर लास्ट 8 years, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। फॉर दैट क्वेश्चन एक्चुअली इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन वी हैव, सो सम मेडिसिन शुड बी टेकन बिफोर फूड, सम शुड टेकन विद फूड and some should be taken after food.
0: Yeah.
1: So you have to ask your pharmacist, your healthcare professional, while they are dispensing the medicine, it's their responsibility to introduce the medicine to you in a thorough manner. So if you are taking, like we can say, if you are taking some medicines like a painkiller, antibiotic, it should be after food.
0: Okay.
1: And the meal should be like a medium meal. If you are taking a snacks, sometimes it will have some issues in your intestine, also in the stomach. So I prefer it should be after food, some medicines. And some medicines like for the protection, it should be taken 15 minutes to 30 minutes before food.
0: Okay.
1: So that is actually called the PPIs. So these are to give a protection to your intestine. So it should be before food.
0: Okay.
1: But definitely the light snacks sometimes will make some stomach irritation. So I recommend to avoid light snacks. Instead, you have a light meal.
0: तो देखिए जी, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा, जब भी अब आप मेडिसिन ले अपने फार्मासिस्ट से एक बार जरूर पूछें कि क्या इससे कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, और एक बार जरूर से पूछें कि आखिर इसे जो है किस वक्त पे जो है वो हमें कंज्यूम करना है, क्योंकि ये बहुत मेजर फैक्टर जो है वो है। सो बाकी और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमें आशिक जी से हमारे एक्सपर्ट फार्मासिस्ट से अभी पूछने हैं, बाकी पूछते रहेंगे। फिलहाल आप वॉल्यूम बढ़ाकर कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा।

0: इतना ज्यादा रोमांटिक ट्रैक है ये, कौन कहेगा कि ये जो उस मूवी में था, उस मूवी का नाम जो है वो कांटे थी, लिटरली कांटे। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यार, मैं जो है आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ जो है वो बताना चाहती हूँ कि बाकी लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनके लिए दवाई खाने का प्रोसेस क्या होता है कि वो जो है फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं एंड फिर उसको जो टाइम बताया गया है उस टाइम पर खा लेते हैं। लेकिन मेरे साथ जो है ये प्रोसेस थोड़ा और लंबा हो जाता था। हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता था, हम फार्मासिस्ट के पास जाते थे, दवाई लेकर आते थे एंड फिर मेरे मम्मी पापा जो है वो जद्दोजहद में लग जाते थे कि इसको दवाई कैसे खिलाएं। एक तो मैं जो है खुद दवाई खाती नहीं हूँ, मैं भूल जाती हूँ। उसके बाद जो है अगर मुझे पता चल रहा है कि दवाई ऐसे सोलो करनी है, खानी है पानी के साथ, मैं नहीं खा पाऊंगी। पता नहीं क्यों मुझसे खाते ही नहीं बनते। सो इसीलिए सबसे हमेशा एक जो मेरा क्वेश्चन रहता था फार्मासिस्ट से वो ये रहता था कि क्या मैं इस यू नो टैबलेट को क्रश करके या पानी में मिलाकर जो है डिजोल्व करके खा सकती हूँ, पी सकती हूँ। सो यही सवाल जो है हमने हमारे एक्सपर्ट फार्मासिस्ट केयर एंड क्योर से, जो आशिक जी हमारे साथ इस वक्त हैं एज द फार्मासिस्ट, में मैंने यही सवाल पूछा कि क्या टैबलेट्स को जो है वो क्रश करके खाया जा सकता है। एंड आप में से भी किसी ने ये शायद सवाल पूछा ही था। सो आशिक जी प्लीज इसका जवाब दीजिए।
1: So usually this one we used to do in our childhood. Some kids don't take the pill.
0: Yeah.
1: If they are about 12 years, okay. And some adults also, they don't like to take the whole tablet. It's a very big in size. Yeah. Sometimes they feel to vomit. So what they will do means they will mix, they will crush it, they will make it a powder, they will mix with water or juice, then they will have it.
0: Hmm.
1: But there are some medicines, you know, that should not be crushed.
0: Oh.
1: Those are called Enricorta tablets. Because you are not aware about it, but the pharmacist will help you. So this, if you are crush it, it will make some stomach irritations.
0: Oh.
1: And also there are some medicines, we call it as sustained release. SR, MR, you can see on the labeling. So these are meant to act for a long time, more than 6 to 8 hours. So if you crush it, it will not last for a long time and whatever you have the condition, it will come back.
0: Oh.
1: So it should not be crushed. But there are some cases that we can crush the medicines. That should be recommended by the pharmacist.
0: Okay. So अगर आपको जो है आदत है क्रश करके अपनी टैबलेट को कंज्यूम करने की, तो एक बार अपने फार्मेसिस्ट जरूर पूछ लेना। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि हमें 4 कदम वॉक करना चाहिए। सो आप जो है ये 4 कदम वाला गाना जो है इसे एंजॉय कीजिए पीके मूवी से। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में अपने फार्मेसिस्ट से। जो है हम ये भी पूछेंगे कि क्या हमें दवाई जो है कंज्यूम करने के बाद उसका रैपर संभाल के रखना होता है। स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी उपन्यास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: बहुत ही अमेजिंग वाला गाना। मुझे नहीं समझ आया कि यार केसरिया जो गाना था उसे ज्यादा प्यार क्यों मिला रसिया से, बल्कि मुझे केसरिया वाला जो गाना था ब्रह्मास्त्र का उससे ज्यादा बेटर ये वाला गाना लगता है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, थोड़ी देर पहले मैं अपने लाइफ का एक इंसिडेंट आपसे शेयर किया कि मुझे दवाई मैं खाना भूल जाती हूँ एंड मेरे मम्मी पापा को कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ता था मुझे दवाई खिलाने के लिए। एंड अब जब मैं बाहर आ गई हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, तब भी उन लोगों का एक कंसर्न रहता है कि दवाई खाने के बाद ना अपना रैपर जो है दवाई का या जो टैबलेट का जो पैकेट है उसे संभाल के रखा करो जब तक तुम्हारा पूरा मेडिसिन का कोर्स जो है वो ख़त्म ना हो जाए। अब देखो, यही वाला सवाल जो है मुझे भी हमारे एक्सपर्ट से पूछना था। सो आशिक जी इस वक्त हमारे साथ है कैरन क्योर से। सो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या दवाई जो है खाने के बाद, मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद, उसका रैपर जो है वो संभाल के रखना ज़रूरी है?
1: डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट। योर फादर हैव द एक्सपीरियंस, सो दैट्स व्हाई ही एडवाइस यू लाइक दैट। इट्स अ सिंपल थिंग एक्चुअली। When you are telling the pharmacist about a medicine's brand name, we are unable to identify the brand if it is not available in the particular market. So suppose you are from a different country other than Qatar and you are taking some medicines and you just come to the pharmacy and telling the name of that medicine. Okay, so you can have this experience, like we have to search on the any other Google or Google search or any other platforms to find out the particular branch. Then only we will identify the active ingredient. We call it as a molecule. The drug molecule is not labeled, it's not the brand name. It is different, the brand name is different. So when you are taking the example of citrulline, commonly you are taking for the allergy. So the citrulline is the drug name, the molecular name. And this Certec, it is called the brand name. So if you come to your pharmacy and you are asking for a Certec, we will understand it's a citrulline. So we will just confirm it before. But suppose if you are old age coming available in India, so if you are telling like that brands and the more then drug name it is called the citrulline, we can identify. So if you bring that full package, the used package, that carton or the box, if you bring to the pharmacy, we can see the ingredient inside. Oh, so we can definitely will suggest something alternative which is available in the market. So definitely you should not throw the old medicine packets or cartons unless it is not required for in the future. So it is okay to keep it with you or take a photo of that one. You can show that to the pharmacist. So he will just look on to the drug inside it and he will suggest something available in the market.
0: ओके, यानी अपने पापा की बात जो है एक बार में सुन लेनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट भी वही कह रहे हैं जो हमारे पापा कहा करते थे। सो फिलहाल जो है और भी सवाल है हमारे पास हमारे फार्मासिस्ट के लिए। सो आप जो है बने रहिए और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा के अमेजिंग वाला गाना जो है वो एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। कहते रहिए जियो बिंदास।

देखिए हर लड़की जो है बस एक ही डिमांड कर रही है कि मेरी फोटो खींच दो, मेरी फोटो खींच दो, मेरा आउटफिट अच्छा लग रहा है, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मेरी फोटो खींच दो। और ये जो है बात हिस्ट्री में लिख दो कि जो भी लड़की जिसे फोटो खींचने का बहुत शौक है उसके फोन का स्टोरेज कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। वैसे स्टोरेज से याद आया, दवाइयों को स्टोर करने का तरीका जो है वो हमने पूछा हमारे फार्मासिस्ट से। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड सो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और हम आज द फार्मासिस्ट में कैरन क्योर से आशिक जी से जो है बात कर रहे थे। आशिक जी आप एक्सपर्ट फार्मासिस्ट हैं, आपको काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल पहले भी पूछा होगा, लेकिन आजकल जो है वो मेडिसिन ऑर्गेनाइजर्स आने लग गए हैं, मैंने काफ़ी सारे एस्थेटिक स्टोर्स पे भी देखा है। सो आप जो है उसमें वीक वाइज डे वाइज जो है अपनी

0: मेडिसिन को जो है वो सॉर्ट करके उसमें स्टोर करते हो. सो क्या ये हेल्दी है, क्या ये करना चाहिए, क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है, या इससे भी कुछ जो है एडवर्स इफेक्ट जो है वो पड़ता है हेल्थ को?
1: यस, इट इज हार्मफुल इन सम केसेस. यू कैन सी सम मेडिसिन द पैकिंग इज वेरी डिफरेंट. यू कैन सी सम टैबलेट्स आर कमिंग ओनली हैव सम गैप इन बिटवीन द टैबलेट्स एंड यू विल बी लाइक वंडर व्हाई दे आर मेकिंग द पैकिंग डिफरेंट. सो यस, इट इज नॉट गुड टू कीप इन अ container, open container or something which is not recommended as the packing, because some medicines are more sensitive to the light, to the atmosphere. Especially in Qatar, sometimes we have a long season of humidity. So these tablets, there is a chance it will get interact with the tablets and the humidity. Because of the humidity, it will lose its potency.
0: Okay.
1: So it is not recommended to have it in the container unless if you are a healthcare professional is suggesting that you can keep in the organizer, it will be better. Otherwise, try to avoid keep in the plastic containers.
0: Okay.
1: It may reduce the efficacy, so you will not get the desired effect.
0: तो देखिए यार, ये वो कुछ सवाल थे जो हमारे लिसनर्स ने सबसे ज्यादा पूछे थे एंड मेरे भी दिमाग में काफी टाइम से चल रहे थे. सो हमेशा अपने इन छोटे जो है डाउट्स को किसी ना किसी एक्सपर्ट से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए. एंड आपके लिए आपके जो फार्मासिस्ट हैं वो हमेशा तत्पर है. कैरन क्योर आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर एक्सपर्ट फार्मासिस्ट से जो है बात कर सकते हैं, अपनी दवाइयों के जो छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको लेकर वो आप पूछ सकते हैं. फिलहाल जो है एक बहुत ही प्यारा वाला गाना सोनू निगम की आवाज़ में आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:12. दैट इज 11:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मे बी अ रिक्वायरमेंट बट विद बीमा यू गेट सो मच मोर. गेट 24/7 रोड साइड असिस्टेंस विद टोइंग, रिकवरी, टायर चेंज, फ्यूल डिलीवरी, बैटरी बूस्ट एंड लॉकआउट सपोर्ट. स्प्लिट योर पेमेंट इंटू 4 इंस्टॉलमेंट्स एंड स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. प्लस गेट अ रिप्लेसमेंट कार फॉर अप टू 3 days, अ वन टाइम एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ एंड व्हीकल इंस्पेक्शन ट्रांसपोर्टेशन. चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ liability today. Call 800-786 or WhatsApp 7405055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
2: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह। स्टे ट्यून्ड।
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आने दो केक्स संडेज आने दो बहुत जगह है
1: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
3: मैं बेटी के लिए जस्टिस चाहिए।
4: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
2: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
5: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
2: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
5: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
2: Overseas release by Zee Studios.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: जिस दिन मेरा दिल ऐसे धड़क धड़क करने लग गया ना, उस दिन मुझे जो है बीपी की गोलियां खानी पड़ेंगी, मुझे ऐसा लगता है। धक धक कर रहा है तब तक बढ़िया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफ एयर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ लाइफ मस्त है। एंड मैं जो है बहुत ही खुश थी जब मुझे ये बात पता चली कि मैं हूँ ना का पार्ट टू आने वाला है। वैसे तो बहुत दिन पहले ही ऐसी बातें कही जा रही थी कि यार इसकी स्टोरी पे काम चल रहा है एंड आने वाला है, ये मूवी आने वाली है। तो अब जो है फाइनली फराह खान ने अपनी इंस्टाग्राम पे, अपनी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद ये जो है और ज़्यादा हवा तेज़ हो गई है कि यार अब मैं हूँ ना टू आने वाली है। एंड मुझे जो है शाहरुख खान, सच में ये जो कुछ मूवीज़ थी ना जो मतलब अर्ली 2000s में आई थी, 90s वाला शाहरुख तो ऑफकोर्स सबको पसंद है, लेकिन मुझे जो है अर्ली 2000 वाला शाहरुख बहुत पसंद है। कभी खुशी कभी गम, मैं हूँ ना एंड ये सारी जो मूवीज़ आई थी उनमें शाहरुख अलग लेवल पे लगे हैं। सो मुझे मैं हूँ ना टू का काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंतज़ार है। वैसे आप मुझे बताइए कि अगर आपको शाहरुख खान की कोई अमेजिंग मूवी का जो है पार्ट टू चाहिए हो सो वो कौन सी मूवी होगी, 3311063 पर मुझे मैसेज करके जल्दी से बताओ। उसके बाद जो है बहुत अमेजिंग और बातचीत भी अभी हमें करनी है। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
2: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

जी, ये जो है बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफर। हाँ जी, आपकी कशिश लौट के आ चुकी है लाइफ मस्त शो आपके लिए लेकर, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, जैसे हमने शो के शुरुआत में आपको प्रॉमिस किया था कि आज आपको मौका देने वाले हम मूवी टिकट जीतने का, सो बिल्कुल आपको जो है हम एक कपल मूवी टिकट जीतने का मौका दे रहे हैं, और आपको बस एक सिंपल से सवाल का जवाब देना है। एंड आई नो आप सब बॉलीवुड पगलूज हो, आप सबको बॉलीवुड के बारे में बहुत पता है, एंड अगर पता नहीं है तो आप सबके हाथ में एक ऐसा यू नो डिवाइस है जिसके बाद आप पता कर सकते हो। वैसे चीटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत कर सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा डाउट हो तो कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ही यू नो आंसर देने वालों को एंड हमारे सिस्टम के द्वारा जो है चुने जाए हुए लोगों को ही जो है हम विनर बनाएंगे। सो सबसे पहले जो है आंसर आपको देना है, क्वेश्चन जो है मैं पूछ लेती हूँ। वैसे मूवी है दृश्यम द कंक्लूजन, जो इस यू नो अक्टूबर को रिलीज होने वाली है फर्स्ट वीक में, एंड डेट मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि डेट में ही छुपा है राज हमारे आंसर का। सो दृश्यम मूवी से ही जो है हमारा आज का सवाल भी है। आपको बस मुझे मैसेज कर 3311063 पर ये बताना है कि दृश्यम मूवी में ये जो पूरा इंसिडेंट हो रहा है, यानी सलगांवकर फैमिली यानी अजय देवगन की जो पूरी फैमिली रहती है उसका पंजी जान

पाव भाजी खाना, ये सब कौन सी डेट को हो रहा होता है। एंड इस पे बहुत सारे मीम्स बने हैं, ठीक है। एंड हिंट देखो यही है कि इसी डेट पर इस साल ये जो मूवी है अभी अक्टूबर में रिलीज हो रही है। इससे बड़ा हिंट, इससे इजी सवाल तो देखो मैं पूछ ही नहीं सकती। सो जल्दी से मुझे बता दो 3311063 पर कि दृश्यम मूवी में ये जो पूरा इंसिडेंट होता है वो कौन सी डेट को हो रहा होता है, वो जो स्टोरी है वो कौन सी डेट की सुना रही होती है ये फैमिली, बताइए मुझे। एंड उसी डेट को जो है ये मूवी रिलीज भी हो रही है अक्टूबर में। सो आपके पास बहुत बड़ा हिंट है 3311063 पर जल्दी से जो है आप मुझे मैसेज कर दीजिए। फिलहाल आवारापन 2 से एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। मूवी टिकट्स अगर जीतनी है तो मैसेज तो देखो करना पड़ेगा। सो अमेजिंग अमेजिंग गाने जो है वो आ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए एंड आंसर दीजिए 3311063 पर। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:10, दैट इज 12:10। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर। सुख वाकिफ अलखोर।
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव। राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: फेवरेट पिंक कलर का मग जो है वो किसने तोड़ा, इससे बड़ी अगर कोई मिस्ट्री है मेरे जीवन में तो वो बस दृश्यम की मिस्ट्री है। वरना मम्मी के मग से कप से इम्पोर्टेंट और कुछ है क्या जीवन में? मतलब धीरे से वो कप जो है जिसमें आप मम्मी नहीं थी घर पे जब कॉफी या चाय पी रहे थे और गलती से वो आपके हाथ से गिर के टूट गया और फिर आपने डांट ना पड़े इस वजह से उसको जो है धीरे से जो है सरका दिया और फिर आप अनजान बन गए कि यार मैंने तो नहीं तोड़ा है, मेरे भाई ने तोड़ा है, पापा ने तोड़ा है, किसने तोड़ा है, कौन हो सकता है जिसने तोड़ दिया? मम्मी मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं तो चाय ही नहीं पीती, कॉफी ही नहीं पीती। मम्मी अगर आप मुझे सुन रहे हो तो वो मैं नहीं हूँ जिसने ये कप वप तोड़े, ठीक है? मैं तो बस एक सिनेरियो बना रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि भाई ने किया होगा। वैसे देखिए ये जो मिस्ट्री है ये तो मुझे नहीं पता कि कब खत्म होगी, लेकिन दृश्यम की मिस्ट्री जो है वो फाइनली कंक्लूड होने वाली, क्योंकि दृश्यम कंक्लूजन जो है वो आने वाली है थिएटर्स में इस अक्टूबर को। और डेट मैं आपको बस इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जो है बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है और आपके पास एक कपल मूवी टिकट जो है वो जीतने का मौका है, यानी दो टिकट जो है आप जीत सकते हैं दृश्यम कंक्लूजन की एक सिंपल से सवाल का जवाब देकर। बहुत सारे लोगों के जवाब ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं लेकिन एक और बार मौका दे रही हूँ अगर आपने अभी रेडियो जो है वो ट्यून इन किया है तो। सो आपको जो है बस मुझे ये बताना है कि दृश्यम मूवी में ये जो दृश्यम मूवी का प्लॉट है, इस मूवी में ये जो इंसिडेंट है ये किस दिन का इंसिडेंट है, कौन सी डेट को इंसिडेंट जो है वो डिस्कस हो रहा है, एंड उसी डेट को, वो जो बहुत फेमस डेट है उसी डेट को जो है अक्टूबर में ये मूवी यानी दृश्यम कंक्लूजन जो है वो थिएटर्स में भी आ रही है। सो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हिंट्स हैं, मैंने आपको बहुत सारे हिंट दे दिए हैं। सो अभी मुझे लगता है कि आपके लिए इजी होगा, आसान होगा, इजी होगा आंसर देना। वैसे बहुत सारे लोग मुझे आंसर दे चुके हैं, किरण जी ने मुझे आंसर दे दिया है, दयार जी ने मुझे आंसर दे दिया है, एंड अभी जो है एक और मैसेज मेरे पास आया है। थैंक यू सो मच, जल्दी जल्दी आप सब जो है अपना नाम और आंसर जो है वो हमें भेज दीजिए एंड उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर जी है ये चुनेगा आप में से एक विनर और आपको कॉल आ जाएगा। मैं हूँ आपकी कशिश, 3311063 पर आप अपने आंसर हमें भेज सकते हैं, 3311063। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

भाई कविता कृष्ण मूर्ति जी का मैजिक जो है थोड़ा अलग लेवल पे बढ़िया लगता है देखो। एंड जी मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपकी लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड आज जो है हमने आपसे बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था और आपको मौका दिया था दृश्यम कंक्लूजन के जो है मूवी टिकट्स जीतने का। सो देखो बहुत सारे लोगों के अमेजिंग अमेजिंग आंसर्स आए हैं, बिल्कुल सही आंसर आए हैं। एंड दृश्यम 1 हो, 2 हो और या फिर 3 हो, उन सब में मतलब ट्रेलर में भी हम सिर्फ यही सुन रहे हैं कि 2 अक्टूबर को पंजी गए थे, पाव भाजी खाई थी। एंड इसका इतना मीम भी बना है ना कि 2 अक्टूबर को, अब मैं जब भी 2 अक्टूबर डेट सुनती हूँ तो मुझे अचानक से दृश्यम ही याद आती है। सो 2 अक्टूबर को ये मूवी जो है वो रिलीज भी हो रही है। सो आप लोगों को जो है हमने मौका दिया था एक जो है मूवी टिकट जीतने का, मतलब 2 मूवी टिकट जीतने का। सो अब हमारे विनर्स जो है वो हमारे पास आ गए हैं। एंड एक बार कंफर्मेशन के लिए जो है आप लोगों के पास जो है हमारी टीम की तरफ से कॉल भी चला जाएगा। सो रुचिका जी एंड किरण जी कंग्रेचुलेशंस, आप जो है हमारी आज की विनर हैं। एंड आपके लिए जो है दृश्यम कंक्लूजन की टिकट्स तो आपको मिलेंगी, साथ में हमारा अगला गाना जो है फुकरे मूवी से अंबर सरिया भी मैं प्ले कर रही हूँ। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए। एंड जिन लोगों को आज जो है टिकट नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं यार, हम आपको फिर से मौका देंगे, आप अपनी मैसेजेस जो है वो जारी रखिए। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। Sounds unbelievable, but it's real.
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
3: लुलू, where the world comes to shape.

देखिए यार, बॉडी का मूवमेंट जो है वो होते रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है ना कि आपकी बॉडी हेल्दी रहती है एंड आप एक्टिव रहते हो। वरना अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे, एक ही जगह बैठे रहोगे, फिर क्या होगा ना कि आपको आलस आएगी। एंड अभी आलस आ रहा है मुझे, क्योंकि मैं बहुत देर से एक ही जगह पर बैठी हूँ। हाँ जी, आपकी कशिश हूँ मैं और मेरे साथ आप लाइफ मस्त शो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का। थोड़ा वॉक करके आती हूँ कल के लिए, थोड़ा मसाला जो है वो मैं जो है अक्यूमुलेट करके आती हूँ, थोड़ा सा जमा करके आती हूँ, ताकि आप लोगों को कल और ज़्यादा फन करा सकूँ और आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना सकूँ। अब देखिए यार, जाते जाते वही कहूँगी जो हर रोज़ कहती हूँ कि अपना थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना और बाकी मुझे याद करते रहना। रेडियो के सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर लो, 3311063, ये नंबर मेरे नाम से सेव कर लो। बाकी कल मुलाकात होगी। अभी जाते जाते एक अमेजिंग वाला ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आपको सुनाते हुए जा रही हूँ, सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो सी यू पिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर। रेडियो

0: party insurance may be a requirement. But with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
1: आने दो बहुत जगह है आने दो केक्स आने दो संडेज आने दो बहुत जगह है
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में डिजर्ट्स 10 रियाल में संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर डोंट मिस आउट
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ
4: रेडियो 106.3
3: जे ओ बिंदास
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
6: रेडियो ऑलिव नंबर वन
7: ऑलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
4: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
3: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
6: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
3: द एंड वी've बीन वेटिंग फॉर दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर।
6: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
3: Overseas release by Z Studios. Olive Music Marathon. 1 ghanta non-stop battle.

की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-561-23.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं।

0: गुड आफ्टरनून, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. आई नो, मतलब अभी थोड़ा सा ऐसा टाइम है जब आपको लग रहा होगा कि यार ऑफिस में बस एक घंटे आधे घंटे का ब्रेक मिल जाए, थोड़ा सा नैप ले लिया जाए तो मजा ही आ जाए. क्योंकि होता है, लंच के बाद ऐसा होता है. दिस इज वेरी नॉर्मल, साइंटिफिक है. पर अभी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप फुली रिचार्ज हो जाएंगे. आपने सिनेमा हॉल को ना हमेशा किस चीज के लिए जाना है? मूवी, पॉपकॉर्न, ट्रेलर्स और इंटरवल में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग. लेकिन अब सिनेमा हॉल की आइडेंटिटी थोड़ी बदल रही है भाई. मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मुंबई की, जहाँ पर लाइव ऑन स्टेज प्लेटफॉर्म की तरह नया एक्सपीरियंस लेकर आए, वो भी सिनेमा हॉल के अंदर. दो दिन पुरानी बात है, मुंबई, अहमदाबाद, गुड़गांव और जयपुर जैसे कुछ बड़ी सिटीज में इंडिया में एक्सपीरियंस किया कि फिल्म स्क्रीनिंग नहीं है. यहाँ पर पोएट्स हैं, सिंगर्स हैं, इन सब ने मिलकर ना एक पर्सनल स्टोरी थ्रू एक ट्रेडिशनल बैठक बनाई और एटमॉस्फेयर क्रिएट किया. और मुझे ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. अभी तक आपने ये कैफेज़ वगैरह में देखा होगा, कतर में भी बहुत सारे कैफेज़ में ऐसा होता है. क्योंकि हम एंटरटेनमेंट को हमेशा ऐसे बनाते जाते हैं कि अब बड़ा स्क्रीन, बड़ा साउंड, बड़ा प्रोडक्शन, मतलब ऑडियंस कभी भी और कुछ एक्सपेक्ट करती नहीं है. सो आई विल से कि ऐसी नई नई चीज़ें ना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देती हैं. सो अभी तक ये मैंने कतर में एक्सपीरियंस नहीं किया है. बट या व्हेन आई वाज वाचिंग सम रील्स एंड वीडियोस, तो मुझे लगा कि आपको बताती हूँ कि क्या नया चल रहा है भाई इंडिया में. सो इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और यहाँ पर आई नो आज संडे है, बहुत सारे काम आपने शुरू कर दिए होंगे. सुबह से ही आपका ऑफिस आने का मन हो या ना हो, पर सुबह सुबह अलार्म को बंद करके ऑफिस आना भी एक बहुत बड़ा टास्क है. बट इट्स ओके, अभी बस खूब सारी नई नई बातें लेकर आ चुकी हूँ. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है. सुनो

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: एक बिल्डिंग है जो कि एक ऑर्डिनरी सी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्हें एक बड़ा सा रीडेवलपमेंट ऑफर मिलता है, किसी के लिए वो पैसा है, किसी के लिए बेटर लाइफ है, और किसी के लिए एक आदमी के लिए वो उसका घर भी है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज। किताब की बात कर रही हूँ, यहाँ पर एक किताब है, अक्लेम्ड नॉवल है, लास्ट मैन इन टावर। उसके सेंटर में है जिसे अब मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, दिव्या दत्त और इन सबके साथ ना फिल्म बनाई जा रही है जो रिलीज भी हो चुकी है, ठीक है। स्टोरी में मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर जो है वो मास्टर जी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, जब अकेले खड़े रह जाते हैं जब उनकी कम्युनिटी के बाकी लोग अलग अलग रीजन से रीडेवलपमेंट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ना पैसा नहीं है, इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि घर आखिर होता क्या है, चार दीवारें या फिर सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर मार्केट वैल्यू या वो सारी छोटी छोटी यादें जिनकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। क्योंकि शहर बदलते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जाती हैं, नए टावर्स आते हैं, लेकिन किसी जगह से हमारा इमोशनल जो रिश्ता है वो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देता। सो ये जो किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। इसी वजह से लास्ट मैन इन टावर सिर्फ एक प्रॉपर्टी स्टोरी नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट बिलोंगिंग्स। और ये ना हम इंडियन सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल दिस इमोशंस फॉर आर थिंग्स, यू नो। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। आप मुझे बताइए कि आपने इस किताब को पहले कभी पढ़ा था। नंबर वही है 3311063 और मैं हूँ मुस्कान। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Awesome.

सो बेसिकली सिनेमा और लिटरेचर की दुनिया में ना एक कहानी पहले नॉवल बनी और फिर उस कहानी पर फिल्म बनी और दोनों को अलग अलग तरीके से देखा गया। मैं बात कर रही हूँ अ सॉन्ग ऑफ इरेशा की। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। दिन का टाइम है और बातें बहुत सारी हैं भाई। आई नो, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो या ऑफिस खत्म करके घर वापस जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि ए के श्रीकांत की ये जो कहानी है, प्रेस्टिजियस आर्ट इंस्टीट्यूट की हेड है इरेशा, उसके आसपास घूमती है। तो बेसिकली फिल्म में इंडियन क्लासिकल डांस है, खासकर भरतनाट्यम, और उसका कुछ पार्ट है। और इंडियन अगर मैं डांस की बात करूं तो उसमें बहुत ही फेमस डांस है ये। सो एप्पल टीवी पर ही ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे फैसिनेटिंग चीज पता है क्या लगती है? स्टोरी बिल्कुल नहीं, इसका फॉर्मेट। ऑथर ने खुद इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि नॉवल लैंग्वेज, कैरेक्टर और इमोशनल पर्सपेक्टिव से कहानी खोलती है, जबकि फिल्म जो है वो इमेज, परफॉर्मेंसेस, एटमॉस्फेयर और साइलेंस की वही डिफरेंट दुनिया है। सो आप सोचिए, जब आप किताब पढ़ते हो तब आप कुछ इमेजिन करते हो, पर जब आप वही मूवी देख रहे हो उसी किताब पर बनी, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट अच्छा लगता है। सो मेरे लिए एडेप्शन वही है जो किताब को कॉपी करने की कोशिश ना करे, वो ये समझे कि जो चीज़ शब्द नहीं कह सकते शायद इमेज कह सकती है, जो इमेज नहीं कह सकती शायद वो सेंटेंस कह दे। सो अगर आपने कभी कोई किताब पढ़ी और फिर उसको फिल्म की तरह देखा तो आपकी इमेजिनेशन जीतती है या फिर डायरेक्टर की। टेल मी। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
6: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में।

सो इमेजिन कीजिए, आप थिएटर में बैठे हो, लाइट्स एकदम डिम है और एक केस आपके सामने आता है। आप फिटनेस की बातें सुनते हैं, एविडेंस देखते हैं, आर्ग्यूमेंट सुनते हैं और फिर फैसला आपको देना है। सो दोहा में चल रहा है द जूरी एक्सपीरियंस, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इंटरैक्टिव कोर्ट रूम प्रोडक्शन। यस, सो बेसिकली यहाँ पर 23rd ऑफ अक्टूबर तक स्केड्यूल है और ऑडियंस को जूरी की जो भूमिका है उसमें रखा जाता है। और इस एक्सपीरियंस का एक जो स्पेसिफिकली चीज है, आई विल से कि लिस्टेड है, यानी टेक्नोलॉजी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोर्ट रूम डिलेमा की तरह सामने रखा जाता है। और मुझे इस इवेंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग उसकी साइकोलॉजी वाला पार्ट लगता है। यार, हम रोज लोगों के बारे में छोटे छोटे जजमेंट्स बनाते हैं, पहली मुलाकात, फिर किसी की आवाज, फिर किसी के कपड़े, किसी के सेंटेंस, किसी का सोशल मीडिया पोस्ट। कितनी बार हम दिन भर में किसी ना किसी को जज करते हैं। सो मेरी तरफ से आज एक छोटा सा थॉट है कि किसी इंसान के बारे में राय बनाने में हम शायद सेकंड लगाते हैं, राइट, लेकिन उसे समझने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए शायद जजमेंट फास्ट हो सकता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो अगर आज आपको किसी सिचुएशन का जूरी बनना पड़े तो आप फैक्ट्स पर ज्यादा भरोसा करोगे या गट फीलिंग पर? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर इज सेम 3311063। फटाफट से मैसेज करके बताओ, सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और ये है ऑलिव रिचार्ज।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

हम अक्सर जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो सोचते हैं कि यार क्या गिफ्ट दें, लड़कों को स्पेशली आपको समझ नहीं आता तो आप वॉचेस गिफ्ट देना पसंद करते हैं। और जब आप कोई वॉच खरीदते हो तो उसके नंबर्स देखते हो कि इसमें कितना गोल्ड है, कितना डायमंड है, इसका प्राइस क्या है, लेकिन ज्वेलरी की वैल्यू अक्सर नंबर में नहीं होती, वो होती है हमेशा दूसरी करेंसी यानी कि मेमोरी में। सो 28th ऑफ सितंबर से 3rd ऑफ अक्टूबर तक DECC में दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन लगने वाला है। और इस साल एग्जीबिशन में इंटरनेशनल और लोकल ब्रांड्स के डिजाइनर आ रहे हैं, वॉच मेकर्स भी आ रहे हैं, और एग्जीबिशन में 500 से ज्यादा ब्रांड्स और लगभग 30,000 विजिटर्स की ना स्केल होती है। सो इस ग्लोबल लग्जरी कैलेंडर का इंपॉर्टेंट इवेंट ये माना जाता है। एंड आई वॉज थिंकिंग कि एक डायमंड नेकलेस की मार्केट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर वही नेकलेस किसी मदर ने अपनी बेटी को दिया हो तो, या फिर ग्रैंड मदर की ज्वेलरी हो, तो आप उसकी वैल्यू अचानक प्राइस टैग से बाहर चली जाती है, मतलब वो फिर प्राइसलेस हो जाता है। लेकिन कहानी बदल गई है और शायद इसी वजह से हम कुछ चीजें पहनते कम हैं, संभाल कर ज्यादा रखते हैं। सो आई विल से कि मुझे लगता है लग्जरी की सबसे इंटरेस्टिंग डेफिनेशन एक्सपेंसिव होना नहीं है, लग्जरी शायद वो चीज है जिसकी वैल्यू आपके लिए मार्केट तय ही नहीं कर सकता। एक पुरानी वॉच हो गया, कोई पुराना लेटर हो गया, आपकी मदर की कोई रिंग हो गई, किसी का दिया हुआ छोटा सा कोई पेंडेंट हो गया, सो इसकी कीमत ना ऑक्शन हाउस तक तय नहीं कर सकता। सो आई विल से कि अगर आपको भी ऐसी वॉचेस पहनना पसंद है सो आप भी इस एग्जीबिशन में जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू शायद ज्यादा ना हो लेकिन इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, आई एम श्योर आपके पास कोई एक पीस ऐसा जरूर होगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063, मैं हूं मुस्कान, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
1: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.
3: We are the sounds of the streets.

0: एक तमिल मूवी है जिसे पहले साउथ इंडियन सिनेमा का हिस्सा समझा गया, फिर उसने इंटरनेशनल ऑडियंस पकड़ी और अब उसकी कहानी हॉलीवुड तक पहुंच गई है। मैं बात कर रही हूँ विजय सेतुपति की महाराजा की। 2024 की इस तमिल थ्रिलर ने इंटरनेशनल अटेंशन तो लिया ही और भाई बहुत स्ट्रांग रन था बाकी कंट्रीज में। ऑफिशियल हॉलीवुड रीमेक की प्लानिंग जो है वो सामने आ गई है। सो विजय सेतुपति ने अभी अपने सीक्वल महाराजा 2 की भी कन्फर्मेशन दी है और इसका हॉलीवुड वर्जन पर भी काम हो रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स ऑलिव रिचार्ज। सो ये सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये इंडियन सिनेमा की चेंजिंग जियोग्राफी भी है। पहले इंडियन सिनेमा का इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन अक्सर बॉलीवुड तक ही सीमित होता था। आज कितनी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जहाँ जो ऑस्कर में जा रही हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी मूवीज। सो आई विल से सिनेमा की स्टोरीज भी अब इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुँच रही है। क्यों? क्योंकि अच्छी कहानी को ट्रांसलेशन की जरूरत कम पड़ती है। इमोशन ट्रांसलेट हो जाता है, फियर ट्रांसलेट हो जाता है, फैमिली ट्रांसलेट हो जाती है और रिवेंज तो शायद पूरी दुनिया समझती है। सो मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही डाइवर्सिटी है कि हमें हर कहानी को बॉलीवुड बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कहानी को वही रहने देना चाहिए जो उसकी सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्ट्रेंथ होती है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर किसी इंडियन फिल्म को हॉलीवुड रीमेक बनता है तो क्या आप ओरिजिनल को ज्यादा पसंद करोगे या नया वर्जन क्यूरियोसिटी से आप जरूर देखना चाहोगे? मुझे तो क्यूरियोसिटी होती है कि अगर बॉलीवुड की या यू नो साउथ इंडियन मूवी कोई हॉलीवुड तक जा रही है तो वो कैसी लगेगी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास। Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khul.
2: Only laga aur ho ja recharge.
3: Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
4: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

आई वॉज वॉचिंग सम रील्स और उसमें मुझे कुछ यू नो पुरानी मूवी के सीन्स देखने को मिले. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. सो गुरुदत्त की फिल्मों के बारे में बात हो रही थी वहाँ पर, विच वॉज प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम. लेकिन अब उनकी जिंदगी भी एक नई स्क्रीन स्टोरी बनने जा रही है. यस, सो बेसिकली कुछ प्रोड्यूसर है और कुछ और भी नॉवलिस्ट हैं जो मिलकर एक यू नो गुरुदत्त पर एक मल्टी पार्ट सीरीज डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कास्ट, डायरेक्टर और प्लेटफॉर्म की डिटेल्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं. और इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि बिमल मित्रा का गुरुदत्त से सिर्फ प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं था, मित्रा ने उनके साथ टाइम बिताया, स्क्रिप्ट्स पर काम किया, बातचीत की और उन्हीं पर्सनल इंटरेक्शन से बायोग्राफी के मटेरियल को निकाला गया है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई वॉज रीडिंग कि गुरुदत्त की पर्सनल रिलेशनशिप्स और क्रिएटिव स्ट्रगल की तरफ ये जो पूरी फिल्म है ये बनाई जा रही है. हम आर्टिस्ट की बायोग्राफी देखना इतना पसंद क्यों करते हैं? हमने ना उनकी फिल्म्स देखी हैं, उनका काम देखा है, फिर उनके पीछे का इंसान जानने की इतनी क्यूरियोसिटी क्यों होती है? शायद इसीलिए क्योंकि हमें आर्ट और आर्टिस्ट दोनों का यू नो एक वर्जन दिखाई देता है. सो आई वॉज थिंकिंग कि लेकिन एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि किसी महान आर्टिस्ट की जिंदगी को सिर्फ उसके दुखों से डिफाइन नहीं करना चाहिए. कभी कभी हम ट्रेजेडी को इतना रोमांटिसाइज कर देते हैं कि इंसान पीछे छूट जाता है और लेजेंड आगे निकल जाता है. सो गुरुदत्त की कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग यही लगता है मुझे कि यू नो उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली लोगों को पता होनी चाहिए. लेजेंड के पीछे का ऑर्डिनरी इंसान कौन था? आप बताइए किस क्लासिक बॉलीवुड पर्सनैलिटी की पूरी लाइफ स्टोरी जो है वो आप स्क्रीन पर देखना चाहते हो? समटाइम्स यू नो आपको और मुझे लगेगा यार अमिताभ बच्चन की स्टोरी देखेंगे तो कितना मजा आएगा ना. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: आने दो बहुत जगह है, आने दो केक्स, आने दो संडेज, आने दो बहुत जगह है।
2: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वर्ल्स सिर्फ 9 रियाल में, इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: जाने का मलाल भी।
1: सो अभी एक किताब की कॉन्वर्सेशन करते हैं जो थोड़ी सी अलग है। कोई थ्रिलर नहीं है, कोई लेसन नहीं है इस किताब में, बल्कि एक ऐसी किताब जो आपको शायद धीरे पढ़ने पर मजबूर करेगी। अमित चतुर्वेदी की एक नई किताब आई थी 2 महीने पहले ऑलमोस्ट, शातुरोग। ठीक है, ये पब्लिश हुई। कहानी एक राइटर की है जो पैरिस में रेसिडेंसी के लिए जाता है और वहां उसे पोस्ट कार्ड वाला पैरिस नहीं मिलता जिसे हम फोटोग्राफ्स में देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर देखते हैं। वो शातुरोग नाम के एक नेबरहुड में रहता है और धीरे धीरे शहर के टूरिस्ट की तरह देखने की बजाय एक लिव्ड सिटी की तरह समझने लगता है। और इसका सेंट्रल थॉट जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। क्या हम किसी शहर को सच में जानते हैं? हम आईफिल टावर जानते हैं, हम यू नो दोहा के कॉर्निश को जानते हैं, सूख वाकिफ को जानते हैं, लेकिन क्या हम उस शहर के छोटे से रास्ते को जानते हैं, वहां रहने वाले लोगों के रूटीन्स को जानते हैं, उन जगहों को जिन्हें टूरिस्ट मैप पर कोई स्टार नहीं मिला? सो अमित चौधरी की इस किताब का जो आइडिया है वो यही है कि फैमिलियर सिटी को नए तरीके से देखना ही राइटिंग का एक पार्ट है। और आई वॉज लाइक यार, पेरिस जाने के लिए ना जाने कितने लोग सपने देखते हैं, राइट? पर वहां पर जो रियल पेरिस है उसे कौन देखना चाहता है? और शायद यही ट्रैवल की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन है। आप किसी शहर की फेमस जगहों की फोटोग्राफ्स लेकर वापस आ सकते हैं, लेकिन शहर को जानना तब शुरू होता है जब आप किसी अनजान गली में बिना किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के चल पड़ते हो। सो आप जिस शहर में रहते हो उसकी कौन सी ऐसी जगह है जिसे आप टूरिस्ट को नहीं बल्कि किसी दोस्त को दिखाना चाहते हो? जैसे कि हम कतर में रहते हैं, राइट? सो कतर की ऐसी कौन सी जगह है जो आपको लगता है कि टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बट स्टिल अगर कोई आपके घर से आता है, आपके दोस्त आते हैं, तो आप उन्हें वो जगह जरूर लेकर जाना चाहेंगे। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। Sounds unbelievable, but it's real.
5: Lulu Fashion Store का half pay back is back.
4: Selected ready-made garments, sarees, churidas, footwear, ladies bags और baby accessories पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का free shopping voucher instantly पाइए।
5: यानी fashion भी और rewards भी।
4: Half pay back, shop more, get rewarded instantly only at Lulu Hypermarket.
6: Lulu, where the world comes to shop.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
5: हाय एवरीवन, दिस इज बेनी दयाल हियर।
6: बेनी दयाल हियर,
5: ऑलिव रेडियो 106.3। जियो बिंदास, जियो बिंदास।
7: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑलिव रिचर्च। सो आज ना सोशल मीडिया पर किसी फिल्म का पूरा ट्रेलर तो आता नहीं है, कई बार एक सीन, एक डायलॉग या फिर कोई छोटा सा क्लिप वायरल हो जाता है और फिर लोग उसी सीन को खोजते रहते हैं, फिल्म देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, यानी कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट पूरी फिल्म की पहचान बन जाता है। और अभी कुछ टाइम से ऐसा ही हो रहा था, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जैसे कि परिणीति चोपड़ा की मूवी रिलीज हुई है, उसके बाद वेटिंग है ऑन अमेजॉन प्राइम, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो रिलीज हुई हैं और उसके बाद क्या हो रहा है कि उनके छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं और लोग उस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इतना कंटेंट है कि अब सवाल ये है कि सिर्फ क्या देखना है, मतलब क्या देखना है, ये सवाल है। ये नहीं सवाल है कि कहाँ जाएं, क्या चेकआउट करें, और बेसिकली वीकेंड भी खत्म हो चुका है तो अब बाहर जाने का प्लान तो इतनी जल्दी बनने से रहा। सो किस चीज ने मुझे ये देखने के लिए रोक लिया है, कभी एक डायलॉग, कभी एक एक्टर के एक्सप्रेशन, कभी बैकग्राउंड म्यूजिक, कभी कोई 30 सेकंड का क्लिप। और यही शायद ना एंटरटेनमेंट की नई लैंग्वेज है, स्टोरी पहले नहीं आती, हुक पहले आ जाता है। सो मुझे लगता है कि अच्छी कहानी अभी भी पूरी कहानी ही होती है, लेकिन आज की दुनिया में उसे पहले एक छोटा सा दरवाज़ा खोलना पड़ता है। सो अगर वो 30 सेकंड में आपको ऐसा लगता है कि यार ये कितना बढ़िया डायलॉग था या कितनी अच्छी चीज़ थी, अगर आप उसे रिलेट करने लग जाते हो तो आप उस मूवी के बारे में सोचने लग जाते हो। सो आपने आखिर बार कौन सी ऐसी फिल्म या सीरीज़ देखी थी जिसके सीन, डायलॉग्स या रील्स जो हैं वो हर जगह पर वायरल हो रहे थे? फॉर मी इट वॉज वेटिंग है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Awesome. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज, ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: ओलिव रिचार्ज।
6: This hour is brought to you by
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

सो आज के टाइम पे ना जब हम कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें चेकआउट करते हैं, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, अटैचमेंट स्टाइल, लव लैंग्वेज, कंपैटिबिलिटी, बाउंड्रीज और ऑब्वियसली इतने सारे मैसेजेस कि भाई क्या ही बात करूं कि मतलब मेरे मैसेज आपने कितनी देर में देखे, ठीक है, कितनी देर में आपने रिप्लाई किया, ये सब चीजें हम चेकआउट करते हैं. सो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में रिलेशनशिप को समझने में बहुत हेल्प हो जाती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑफकोर्स ऑलिव रिचार्ज. लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने प्यार को इतना एनालाइज करना शुरू कर दिया है कि फील करने की जगह कहीं बची ही नहीं है. कोई थोड़ा सा चुप है तो उसको हमें को लगता है कि ये तो बात ही नहीं करता. कोई ज़्यादा अटेंशन चाहता है तो हम इनसिक्योर समझने लग जाते हैं. कोई अपने लिए टाइम चाहता है तो हम इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं. हर बिहेवियर के लिए एक लेबल जो है वो हमने रेडी रखा है. लेकिन इंसान कोई टेक्स्ट बुक तो है नहीं. हर चुप्पी ना ट्रॉमा नहीं होती, हर डिसएग्रीमेंट टॉक्सिसिटी नहीं होता और हर कोई इम्परफेक्ट पर्सन रेड फ्लैग नहीं होता. सो बेसिकली व्हेन आई वाज रीडिंग तो मुझे लगा कि रिलेशनशिप में ना अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ को डायग्नोस करना भी उतना ही ज़रूरी नहीं है. कभी कभी सामने वाले को समझने के लिए गूगल की टर्मिनोलॉजी नहीं चाहिए, आपको एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए. क्योंकि कंपैटिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसे हो. शायद इसका मतलब ये है कि दो अलग लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहें. सो आई विल से कि आज ऑलिव रिचार्ज पर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपको क्या लगता है कि हम रिलेशनशिप को आजकल ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज करते हैं? और ऑनेस्टली बताइए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन फ्लैग क्या है? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
3: लुलू, where the world comes to shop.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
4: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

So this is the last thought of the day. You know, you are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Olive Recharge. और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है ये आपके लिए. हम ना वर्ड्स को बहुत हल्के में लेते हैं. अरे मैंने तो बस बोल दिया था, मैंने तो बस मजाक किया था, मैसेज ही तो था. लेकिन वर्ड्स ना कभी कभी सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो लोगों की थिंकिंग बदल सकते हैं, किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, किसी को हर्ट कर सकते हैं, और कभी कभी पूरी कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन ही बदल सकते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो Olive 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है Olive Recharge. इसी आइडिया पर एक यू नो बुक आई है, इट स्टार्टेड विद वर्ड्स. किताब का नाम है, हर्ष मंदार की किताब है. हेट स्पीच और पब्लिक डिस्करेज की रिलेशनशिप और एग्जामिन करती है. बुक जो है ऑलमोस्ट 272 पेजेस की है और ये देखती है कि वर्ड्स कैसे टेलीविजन या किसी प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल स्पेस के थ्रू सर्कुलेट होकर सोशल इफेक्ट पैदा करते हैं. लेकिन इस बात से अगर मैं बात कहूँ तो क्या बोलने की फ्रीडम के साथ सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि हम ना सबके पास माइक्रोफोन्स नहीं हैं, लेकिन हम सबके पास वर्ड्स हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वॉइस नोट है, घर की कॉन्वर्सेशन में, ऑफिस में, कहीं पर भी. कभी कभी एक सेंटेंस किसी के पूरे दिन का मूड बदल सकता है, इवन रेडियो पर भी. सो आई विल से कि मेरी तरफ से आज का सिंपल थॉट यही है कि हम अक्सर कहते हैं कि वर्ड्स आर पावरफुल, लेकिन शायद असली बात यह है कि वर्ड्स पावरफुल तभी होते हैं जब सामने वाला उन्हें अपने दिल में जगह देता है. इसीलिए अगली बार बोलने से पहले शायद एक छोटा सा पॉज काफी है. क्या मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहती हूँ या फिर सामने वाले तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है. सभी के लिए आई विल से कि इस किताब को अगर पढ़ने का मन करे तो जरूर पढ़िएगा. किताब का नाम है इट स्टार्टेड विद वर्ड्स. यू आर लिसनिंग रेडियो Olive 106.3 FM. फॉर नाउ आई हैव टू से बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. रेडियो

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

हफ्ते का पहला दिन कैसा रहा यार? जिनकी दो दिन की छुट्टी होती है ना, उनको तो ऐसा होता है ओ यार फिर से आ गया संडे। लेकिन यार जो हम लोग जिनकी फ्राइडे को छुट्टी होती है, सैटरडे को हम एकदम प्रिपेयर होते हैं और संडे हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल लगता है। लेकिन बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन? 3311063 पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को भेज दो, इंतजार कर रही हूँ। तब तक जिगर ठंडा करते हैं आपका। आई लव दिस ट्रैक यार, जिगर ठंडा रे। 2, 1, go!

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: Hi guys, this is Abhar Shetty Khurana और आप मुझे सुन रहे हो Radio Olympic।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

क्या प्यारा गाना है यार, अच्छी फिल्म थी यार, कुछ कुछ होता है। छत्तीस डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है, फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस। ये धीरे धीरे यही हो जाना है यार। एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 37 डिग्री सेल्सियस था और मिनिमम आज का 30 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। विंड जो है 15 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी 52% है। सो मौसम बता के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है।

0: चार घंटे के लिए मैंने भी आपको फंसा लिया, जाना की देनी है, वापस लौट के आ रही हूँ।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

यार बहुत प्यारा गाना है यार ये, नानानिया फिल्म से। जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सब हो जाता है यार। हाय हाय क्या बड़ी बड़ी बातें करती हूँ यार मैं। मुझे अभी तक गुड इवनिंग का मैसेज नहीं भेजा तो कट्टी है आपसे, मैं बात नहीं कर रही हूँ। ऐसे थोड़ी होता है यार, प्यार जो है वो देना जरूरी होता है, जिस तरह से मैं आपको 100 किलो वाला प्यार देती हूँ। सो अगर आप शॉपिंग को बहुत सारा प्यार देते हैं, आपको मार्केट वगैरह जाने का मजा आता है, सो दोहा फेस्टिव मार्केट जो है वो लौटने वाली है। सेप्टेम्बर ऑलमोस्ट खत्म, अक्टूबर आ जाएगा, फिर नवंबर आ जाएगा। 14 नवंबर से ये दोहा फेस्टिव मार्केट जो है दोहा गोल्फ क्लब में स्टार्ट होने वाली है। इसमें क्या है कि होममेड प्रोडक्ट्स होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो लोकल ब्रांड्स होते हैं, फूड ऑप्शंस हैं, फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज होती हैं और ऊपर से मौसम भी अच्छा होता है। सो या ये कुल मिला के सब कुछ होने वाला है और भी बहुत सारी चीजें अपने कतर में होंगी जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाएगा, बताते जाएंगे। अगले घंटे बाय द वे मौसम थोड़ा सा फिल्मी होने वाला है क्योंकि आपको मैं दृश्यम 3 की टिकट्स देने वाली हूँ, आप हमारे साथ ये फिल्म देखने वाले हैं, मजा आ जाएगा दोस्त। तो वो टिकट जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अरे इंतजार करो यार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas released by Zee Studios.

0: ये तो बात है यार। मोड पे मिल जाए तुझे प्यार, 6:15 हो चुके हैं, बस लाइफ में प्यार मिल जाए, टॉक्सिक लोग ना मिले। इतनी हंसने की कोई जरूरत नहीं है यार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए।
1: ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह।
0: अच्छा बता ना यार, बता
1: भूलेगी मेरा नाम,
0: मेरा नाम तो नहीं भूल सकते यार, है ना। मैं बार बार बताती रहूंगी, याद दिलाती रहूंगी, और एक चीज याद दिला रही हूँ आपको, दृश्यम 3 रिलीज होने वाली है। फिल्म मास्टर यूएई आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये फिल्म। इस 3 अक्टूबर को हम दोपहर के 2 बजे ये फिल्म देखने वाले हैं। सैटरडे उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, मजेदार आफ्टरनून में मूवी जो है वो देखने वाले हैं। लेकिन आप इसकी टिकट मत खरीदिए, हमने आपके लिए इंतजाम कर दिया, पूरा थिएटर बुक कर दिया है। ओके, सो आपको बस आप टिकट्स जीतनी है, किस तरह से जीतनी है वो भी बड़ी इजी है। सो मेरे पास 2 कपल टिकट है, 2 लकी विनर में चूज करने वाली। आप अपने अपने पार्टनर को साथ में लेके जा सकते हैं। अब आप ये मत बोलना अरे सिमरन जी हम तो सिंगल है, अरे दोस्त को भी लेके जा सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी को भी साथ में लेके जा सकते हो। तो कपल का मतलब वो वाला कपल नहीं होता है, फीलिंग कम लिया करो। ओके, So, आपको मुझे क्या करना है, एक वॉइस नोट भेजना है, आपको पता ही कि आप क्या करते हैं। आपको मुझे बताना है कि आप ये दृश्यम 3 की कपल टिकट जो है क्यों डिजर्व करते हैं। 15 से 30 सेकंड के अंदर बताइएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट की कहानियां मत सुनाइएगा मुझे, और एकदम एनर्जी चाहिए सिमरन गौर वाली। हे सिमरन, अपना नाम बताओ, आप दृश्यम 3 की फ्री टिकट क्यों जो है वो डिजर्व करते हो, जल्दी से बताओ, भेज दो 3311106। समझो ना, 1 फिल्म से ये गाना है। बाय द वे कल मैंने 1 फिल्म देख ली। अरे दोस्त बहुत ज्यादा फोर्स किया यार, मैं दोस्तों के चक्कर में देख ली ये फिल्म मैंने। इट्स ओके, देख सकते हो आप भी।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: वो करना ही पड़ेगा और सबको तो नहीं कर सकती हूँ। 6:20 दो सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं और फिल्म मास्टर यूएई आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दृश्यम 3, जो कि हम इस 3 तारीख को सैटरडे को दोपहर 2 बजे देखने वाले हैं। और मैं आपसे बोल रही थी कि देखो यार, दो लकी विनर जो है चूज करने वाले, जिनको जो है वो कपल मूवी टिकट मिलने वाली है। सो आपको मुझे बताना है कि आप ये कपल मूवी टिकट जो है क्यों डिजर्व करते हैं। सो आपको 15 से 30 सेकंड के अंदर अंदर बताना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी कहानियां नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? इतना टाइम नहीं है यार मेरे पास, समझ रहे हो आप? ठीक है, सो आपको मुझे बताना था रीजन।
1: हेलो सिमरन, गुड इवनिंग, दिस इज अभिषेक।
0: हाय अभिषेक।
1: एंड वी डिजर्व दिस दृश्यम 3 टिकट्स बिकॉज़ वी आर न्यूली मैरिड एंड सी इज द फर्स्ट टाइम हियर इन कतर, दैट्स व्हाई।
0: अरे
1: थैंक यू, गुड इवनिंग।
0: बधाइयां बधाइयां, तो बहुत सारे पटाखे। ये टिकट्स हो गई है आपकी और अभी एक और कपल मूवी टिकट जो है वो बची हुई है, अगर आपको चाहिए। तो इसी तरह से एनर्जी के साथ सिमरन कौर का शो सुन रहे हो तो सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ 15 से 30 सेकंड में रीजन बताइए अपने नाम के साथ और भेज दीजिए 3311।

0: भी 100 किलो वाला जो कि आप लोगों के लिए मेरे दिल में हमेशा है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ये लास्ट में जो आउ किया ना, इससे मुझे काजी याद आ गया यार, बिग बॉस का आजकल वो करते ना, आई एम अ रॉक स्टार बेबी आउ। मैं बोर हो गई यार सुन सुन के। ये 6:32 नहीं सीधे 33 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। एंड देखो यार, दृश्यम 3 देखने का टाइम आ चुका है। फिल्म मास्टर यूएई आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि यार इस 3 अक्टूबर को आप हमारे साथ दृश्यम 3 देखने वाले हैं दोपहर को 2 बजे, वो भी फ्री में, पूरा थिएटर अपना रेडियो ऑलिव का, आप कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ विनर्स रहने वाले हैं उस थिएटर में। सो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप मुझे बताइए कि आप ये फिल्म देखना क्यों डिजर्व करते हैं, आप ये फ्री कपल मूवी टिकट क्यों डिजर्व करते हैं।
1: हाय सिमरन, दिस इज आयशा
0: जी।
1: वी डिजर्व दिस दृश्यम 3 मूवी टिकट बिकॉज़ रिसेंटली वी हैव मूव्ड टू कतर।
0: वाओ।
1: एंड वी हैव नॉट गॉट अ चांस टू वॉच अ मूवी टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ।
0: हां,
1: सो दैट्स व्हाई वी नीड
0: द बधाइयां मिठाइयां। आयशा जी, स्वागत है आपका कतर में, और एंजॉय करिए ये फिल्म। और बाकी लोग परेशान मत होजिएगा, कल परसों नर्सों ये टिकट्स आपको मिलने वाली हैं। सुबह से लेके शाम तक शोज को ध्यान से सुनिएगा, सबको मौका मिलेगा। और ये गाना ओए होए होए, ये भी सबको सुनने का मौका मिलेगा। भाई साहब क्या गाना है यार, ये मैं अपने रूम में फुल वॉल्यूम पे सुनती हूँ, लाइट स्लो करके, मजा आ जाता है। देखो यार, मेरा म्यूजिक सुनने का अपना तरीका है।
2: जो मोहब्बत है ये उनका है काम,
0: महबूब का जो बस लेते हुए ना थोड़ी देर में। बिल्कुल ये कहना कभी मत भूलना, लव यू जिंदगी, जिंदगी में लव यू बैक यार।

देखो दोस्त, अगर इस गाने की फील लेनी है ना तो वॉल्यूम बढ़ा के सुनना और फील के साथ सुनना क्योंकि मैं भी यही करने वाली हूँ। स्टूडियो की लाइट्स बंद कर रही हूँ मैं और फुल वॉल्यूम पे इसको सुन रही हूँ। देयर यू गो।

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पाडवी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: साथ है उतना गोलगप्पों के भी साथ है, लेकिन गोलगप्पों से जब कोई खिलवाड़ करता है ना तो इट हर्ट्स यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। अभी मुझे बहुत ही गंदे वाला हर्ट हुआ, मैंने एक वीडियो देखी है जो कि वायरल हो रही है, जिसमें गोलगप्पा पता है कैसे बनाया जाता है। नॉर्मली गोलगप्पा कैसे बनाया जाता है, गोलगप्पा होता है उसमें फोड़ फोड़ के उसके अंदर आलू और चना और ये ऐसी चीजें डालते, फिर मीठी चटनी, फिर तीखी चटनी डाल के, और फिर पानी के साथ हम वो जो गोलगप्पे वाला है, मुंह में पानी आ रहा है बोलते बोलते ही, ठीक है तो हम एकदम खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बेस जो है वो पता है किस चीज का बनाया गया, यहाँ पे गोलगप्पा फोड़ा गया, उसके अंदर आटे का हलवा डाला गया और उसके बाद आलू डाले गए, चना डाला गया, मीठी चटनी, तीखी चटनी, फिर उसको पानी के साथ सर्व कर रहे हैं। लाइक क्या जरूरत थी यार, मुझे पता है मीठा और तीखा एक साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए चटनी है यार, हलवा डालने की क्या जरूरत है यार, क्या कर रहे हो यार तुम, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं यार।
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये गाना

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: हो लाइफ से। सबसे बेस्ट चीज होती है कि आप एक्सेप्ट कर लो, ओके फाइन मैं गलत, फिर आपका पीस ऑफ माइंड जो है ना बस वो नहीं जा, मतलब उसको ध्यान में रखो यार बस थोड़ा सा। 7:07:30 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं,
1: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर,
0: हसीना मान जाएगी। सो यार गोविंदा ने बीवी नंबर वन को रिजेक्ट कर दिया था हसीना मान जाएगी के, हसीना मान जाएगी के लिए, ओके, क्योंकि उसका ये कहना था कि साजन चले ससुराल में सेम तरह का कैरेक्टर जो है वो कर चुके हैं। सो ये फिल्म जो थी वो करिश्मा कपूर के 25th बर्थडे पे रिलीज की गई थी। सो 1999 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के यू नो प्रोमोज वगैरह चल रहे थे, और जब ब्रेक होती थी ना तो इस फिल्म के प्रोमो जो थे वो चलते थे ब्रेक सेशन में, है ना, और उसके साथ साथ अनुपम खेर ने अरुणा ईरानी का जो था वो एल्डर ब्रदर बने हुए थे और इस फिल्म में, जबकि वो 9 साल छोटे हैं रियलिटी में। इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बातें आपको बताऊंगी, सुनते रहिए रेडियो ओलिव, कहते रहिए जियो विंदास।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: Hi, this is A.R. Rahman.
2: A.R. Rahman.
1: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: I'm in number one. Radio Olive.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.
10: Just

आए हाय हसीना मान जाएगी इस फिल्म के बारे में बात करें मैं कि जी सोनिया गुप्ता दी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाडे नाल सो इस फिल्म की शुरुआत में सोनू मोनू जो है वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते बिल पे करने के लिए तो मोनू जो है वो शक्ति कपूर की पॉकेट को जो है वो चुराता है उससे लेकिन उसकी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसका हाथ जो है वो स्टक हो जाता है वो वाला सीन जो है वो द रिटर्न ऑफ मिस्टर बीन से उन्होंने लिया गया था ठीक है टेलीविजन जो सीरीज थी उसकी फिर इसी सीन को धमाल फिल्म में संजय दत्त ने भी यूज किया था एंड बात करें रीयूनाइट होने की संजय दत्त एंड गोविंदा 4 साल के बाद आंदोलन फिल्म के बाद जो था इकट्ठे हुए थे संजय दत्त ने डेविड धवन के साथ 10 साल बाद जी हाँ ताकतवर फिल्म 1989 में आई थी 10 साल बाद उन्होंने इस फिल्म में काम किया था. अब एक फनी किस्सा बताती हूँ अरुणा ईरानी ठीक है अरुणा ईरानी जो थी वो गोविंदा के साथ कॉमिक थोड़ा सा रोमांटिक सीन जो है वो नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उसका ये कहना था कि भाई वो गोविंदा की माँ बन चुकी है बहुत सारी फिल्मों में लेकिन सम आओ डेविड धवन ने कन्विंस किया कि भाई ये रोल कर ले. 7:20 55 सेकंड स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है. सिमरन कौर आपके साथ है.

0: है रोमांटिक गाना कहीं पे लिखा था कहते हैं कि सम पीपल विल स्पेंड इयर्स हीलिंग फ्रॉम अ सेंटेंस यू सेड इन सेकेंड्स. हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं जब हम किसी को गलत बोलते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि हमने ये बोल दिया और बहुत गलत बोलते हैं, तो आपने वो गुस्से में बोल दिया या फिर आपका एग्रेशन था जो वो आपने बोल दिया, लेकिन लोगों को सालों लग जाते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए. जो कहते हैं ना कि जबान जेड़ी हैगी है ओह मतलब आरी या चाकू तो भी ज़्यादा जो है वड्डा काओ दिंदी है. तनु तुसी हील नहीं कर सकते हैगे क्योंकि जबान को सोच समझ के कहते हैं कि इस्तेमाल जो है वो आपको करना चाहिए. आपका तो गुस्सा हो जाता है, आपका तो वो एंगर मोमेंट हो जाता है ना, ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, लेकिन सामने वाले पे उस चीज़ का कितना असर पड़ता है, वो बंदे को अब सालों लगेंगे उस चीज़ से हील करने के लिए. और कभी कभी ये हीलिंग जो है ना, जो आपने कभी बोल दी जबान से किसी को गलत बात, तो उसकी हीलिंग कभी होती ही नहीं है.
1: सच कह रहा है दीवाना दिल, दिल ना किसी से लगाना.
0: इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब अपनी जबान से किसी के लिए शब्द निकाले तो सोच समझ के निकाले.
1: अपना है ये ख्याल,
0: क्योंकि गुस्से में भी आपको अपनी लिमिट्स जो है वो भूलनी चाहिए. गुस्सा आ रहा है ठीक है, थोड़ा सा चिल्ला लो, किसी को इतना गलत मत बोलो यार, बस ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखो. सबकी जिंदगी सॉर्ट रहेगी, आपको भी गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, पर कभी इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल करिए कि किसी को एंजाइटी हो जाए, कोई शेक करने लग जाए, कोई अपना मील स्किप करने लग जाए, किसी की जिंदगी ऊपर नीचे हो जाए. आई होप आज का लेसन आप लोगों के लिए काफी है यार.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: Fresh, fresh on the grill. Slow cooked mandi. Perfectly spiced prawns. And that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns. Crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar. The ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening make you drive golden with
5: biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

बारे में क्या ख्याल है आपका? नाम लिख के जो है व्हाट्सएप कर दो, जो मैं नाम मेरे सिस्टम से देखांगी मैं थोड़ा नाम बोलांगी। जे थोनू नहीं, अगर आपको नहीं समझ लग रहा है मैं क्या बोल रही हूँ तो हिंदी में भी बोल देती हूँ। अभी मैं नेम गेम स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं रेडियो पे बोलूं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दीजिए। मेरा नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए। चलिए मैं नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। बिलाल जी, मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच। आयशा जी, अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। खाजा जी, थैंक यू सो मच। राज जी, थैंक यू सो मच। प्रेम जी, थैंक यू सो मच। हर्षी मनवर जी, थैंक यू सो मच। रमेश जी, थैंक यू सो मच। अकील सुल्तान जी, थैंक यू सो मच। रोहित जी, थैंक यू सो मच। सुपर स्टार किसने लिख के भेजा, थैंक यू सो मच। विश जी, थैंक यू सो मच। विशाल जी, थैंक यू सो मच। किंजल जी, थैंक यू सो मच। इकबाल जी, थैंक यू सो मच। प्रभाकर जी, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, थैंक यू सो मच। रुचिका जी, थैंक यू सो मच। सिर्फ और सिर्फ नाम दोस्त, हाय हेलो मत करिएगा, ओके। आशिक जी, थैंक यू सो मच। यासीन जी, थैंक यू सो मच। किसी ने मेरा बाबू लिख के भेजा है, आपने बाबू पने से बाहर आ गया, अपना नाम बता दो यार। मोहम्मद इदरीस जी, थैंक यू सो मच। हुज़ैफा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। ओके। संदीप जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। वृषिक जी, थैंक यू सो मच। अरविंदर सिंह, रोशन जी, थैंक यू सो मच। विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। आयश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जीम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। यासिन जी, थैंक यू सो मच। बद्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। शाहजेब आफरीदी जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। हाशिम जी, थैंक यू सो मच। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बड़ा, आप थैंक यू लिख के भेज दो और अपना फेवरेट वाला इमोजी लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप मोहब्बत में गाना, आपको और भी प्यारा लगेगा वो इंसान जो आपको हर जगह दिख रहा है। हाय, हाउ स्वीट। हाँ, यहीं से काम शुरू हो गया आपका।

0: संडेज आने दो बहुत जगह है।
1: फ्रिज में और पेट में बस जगह तो बनानी ही पड़ेगी। जब डेयरी क्वीन के स्पेशल ऑफर में मिलेंगे आइसक्रीम केक सिर्फ 60 रियाल में, डिजर्ट्स 10 रियाल में, संडेज 5 रियाल में और स्वल्स सिर्फ 9 रियाल में इस 26 से 30 सितंबर तक सिर्फ डेयरी क्वीन पर। डोंट मिस आउट।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: Hi, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
6: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपना साथ है बेबी चलो खेलते हैं
1: रेडियो ऑलिव पर एक चुटकी सॉन्ग
2: बहुत बढ़िया
0: एक चुटकी सॉन्ग में मैं आपको सॉन्ग सुनाने वाली हूँ जरा ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि ये कौन सा सॉन्ग है गा के या बोल के बता सकते हैं आप बट रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए क्योंकि आपका जितनी बार मन करे उतनी बार सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि गाना कौन सा है वैसे इसको ज्यादा बार सुनने की जरूरत है नहीं पता लग गया है तो क्विकली वॉइस नोट जो है मुझे भेजिए लिख के मत भेजिएगा हे सिमरन सिमरन कॉल वाली अर्जी के साथ और गाना गाइए या बोलिए भेज दीजिए 3311063 पर एक बार वापस से फटाफट से जवाब भेजो इंतजार कर रही हूँ
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: सर क्या पर ये बात है
5: कूल सॉन्ग

0: लड़ाई कैसी? दोनों खाओ।
1: 26 से 30 सितंबर तक पापा जॉन्स पर पाओ बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा। अब सबको मिलेगा सबके हिस्से का प्यार सिर्फ पापा जॉन्स के साथ।
2: पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा। सर्विंग 20 इयर्स बेटर पिज्जा इन कतर।

0: 101 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइव मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: योगिता दी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाडे नाल और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: जिसमें मैंने आपको ये चुटकी भर सॉन्ग सुनाया जानना मुश्किल है ही नहीं
3: सांसों की जरूरत हो जैसे
0: ओहो
3: जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए
4: क्या बात है यार
0: एक नंबर गाना भी एक नंबर फिल्म भी एक नंबर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए रेडियो ऑलिव करके जियो बिंदास

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड TNC अप्लाई।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्निंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने, आई लव दिस ट्रैक यार।

0: किसी एक इंसान को नहीं बोल रही हूँ, जेलस मत फील करो, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ यार। चलो ठीक है, कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आप लोगों से मुलाकात। अभी के लिए ओवर थिंकिंग मत करिएगा, ठीक है, स्ट्रेस मत लीजिएगा, ट्रस्ट मी इससे कुछ नहीं मिलता है यार, आपके बाल बाल गिरेंगे और कुछ नहीं होगा, और ऐसे चेहरे पे ग्लो भी नहीं रहेगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी जो कि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा जिसकी वजह से आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। तो अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, कंधे भी दरवाज करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

साल। प्यार दे ये 100 किलो बिना भेदभाव, सुनो के कहोगे ये लड़की है वाव, तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।